एकदम संगत दे चा के सतगुरु देव जी महाराज सिंघासन ते बैठे सन, सीने दिच खिच के लत मारी। बिरद शरीर 84 साल दा सिंघासन तो थले गिरे, एकदम अपने आप नू संभालिया है। ते संभाल दियां सार आपने दातू दे कदम पकड़ ले, चरण पकड़ ले, और जो बेनती की थी सिख जगत दे महान इतिहासकार कवि ते ब्रह्मनिष्ठ चूड़ामणि भाई संतोख सिंह जी ने इंज लिखे ने, एक तो सेवा करत रहे हूं, द्वितीय बैते बिरद भय हूं, या ते अधिक शरीर कठोरा, तुमरे चरण मृदर न थोरा। ऐ दातू जी, एक ते मेरी उम्र वडेरी है, 84 साल दा हो गया, जिस करके मेरिया हड्डियां सख्त हो गई, चमड़ी सख्त हो गई, मांस सख्त हो गया। उम्र दे वड्डे होण नाल शरीर कठोर हो गया। ते दूसरा दातो जी, मैं अद्धी रात नू उठ के ब्यासा तो जल भरण दी सेवा करदा रहा 12 वरे, लकड़ फाड़ने, तप्पड़ झाड़ने और लंगर वंडना, इस तरह दी करड़ी सेवा करके और वडेरी उम्र करके मेरा शरीर करड़ा हो गया, मेरिया हड्डियां करड़ियां हो गई ने। एक तो सेवा करत रहे हूं, द्वितीय बैते बिरद भय हूं, या ते अधिक शरीर कठोरा, तुमरे चरण मृदर न थोरा। तो मेरा शरीर बड़ा करड़ा हो गया, थोड़े चरण बड़े कोमल ने, तुसी मैनू खिच के लत मारी है, किधरे थोड़े चरणा नू मोच ते नहीं आई, इंज हाथ जोड़ के खड़े ने। दातू दा अहंकार ते क्रोध पानी पानी हो गया, और आखण लगा एही निर्माणता एही गरीबी, दरअसल इसे करके तुसी साडा घर लुट के ले गए, साडी गद्दी ले गए, साडी विरासत तुसी ले गए। पर ए बचन भी बड़े खुशी नाल गुरु अमरदास जी महाराज हाथ जोड़ के सुन दे रहे, जिथे आपने वरण वंड जात दी प्रथा नू खत्म कीता, उत्थे एक तीसरी लानत छा गई सी देश देच, पढ़ दे दी इस्त्री नू लंबा घुंड कंडाना या बुरके देच रखना। कुछ इस्लामी तहजीब दा असर ते कुछ है मनुख दी परबलवाशना करके इस्त्री जगत दा अपना एक संकोच, लंबा घुंड और बुरका आलमे वजूद देच आया। गुरु अमरदास जी महाराज इस दी मुखालफत कर देने, और आपने हुक्म कर देता कि संगत देच कोई भी बीबी पर्दा करके ना आवे, बुरके देच ना आवे, कुंड कटके ना आवे। कहिंदन हिमाचल प्रदेश दे राजे दी, पहाड़ी राजेयां दी एक राणी किधरे बहुत लंबा घुंड कटके पातशाह दे दर्शन करन लई आई, ते गुरु अमरदास जी महाराज ने कह दिता कौन झल्ली आई, झल्ली हो गई सी। और फिर जद शरीका ने राजे ने बेनती की थी, महाराज ए झल्ली हो गई, ए ते ठीक नहीं होया, तो पातशाह कहन लगे कोई नहीं, घोंडे एक पासे करके लंगर दे भांडे मांजे ठीक हो जाएगी। और वाकई ओ ठीक हो गई। उस तो बाद गुरु अमरदास जी महाराज दे दरबार देच कोई भी बीबी घुंड करके नहीं आउंदी सी, बुरके दे जो है नहीं आउंदी सी। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी बुरके दी मुखालफत कर दी, पर्दे दी मुखालफत कर दी, रहो रहो री बहुरिया, घूंघट जिन काड़े, अंत की बार लहे गिन आंडे। ऐ बहु ऐ बीबी घुंड क्यों कड़ रही है, संगत दिच बैठ घुंड नू एक पासे करके, हां अगर घुंड कढ़ना ही है, वाकई पर्दा करना ही है, तो घुंड ते ए होंदा है, घूंघट तेरो तो ऊपर साचे, हर गुण गाए कुदे अर नाचे। घुंड ते होंदा है शर्मो हया दा, घुंड ते होंदा है।

बहुत वड्डा पर्दा, बहुत वड्डा पर्दा। अंधेरा सब कुछ नू ढक देंदा है, प्रकाश सब कुछ नू प्रगट कर देंदा है, प्रगट कर देंदा है। तो मैं अर्ज करा, जो कुछ भी प्रगट है ये आत्मा दे प्रकाश करके ही प्रगट है, उंज नहीं। एक परमात्मा, एक आत्मा, फिर आत्मा दा ही प्रकाश मन, मन दे प्रकाश करके ही तन है ते सब कुछ है। मैं इस प्रकरण नु कितना खोल सकांगे ते गुरु दी दित्ती हुई समर्था ठीक है, मैं छेड़ बैठा, पर जितनी गुरु दी कला वरतानगे, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करनगे, इस मुख नुक्ते नूं मैं थोड़े सामने खोलण दी निमाणी कोशिश करांगा। क्योंकि आम ये दो पंक्तियां दोहराईयां जांदियां खास कर समागमां दे, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रे संपूर्ण थी आराम। किरण की संपूर्णता उदो ही है जदे सूरज हो जाए, नहीं तो सीमित है। लहर की संपूर्णता उदो है जद सागर हो जाए, नहीं तो सीमित है। सीमित होना दुखदाई है, सीमित होना मनुख की चेतना बर्दाश्त नहीं करते। मनुख हर पख दे हर पासों विस्तार चाहता है, इस वास्ते मनुख नू मौत कबूल नहीं, क्योंकि मनुख जीवन नू सीमित कर दिए ते मनुख ते इतना जीवना चाहता है, कितना जे जुग चारे आर जा और दसूने। इस वास्ते मौत दा नुकता, मौत दी गल मनुख नू चंगी नहीं चली, असीम जीवन चाहिए, मौत ते सीमा कर देंदी, सीमित कर देंदी, सीमित ही नहीं कर दी, वो जो जिंदगी चल रही होंदी उन्हें खत्म कर देंदी। प्राणा विच प्यास परमात्मा दी है, वो किस तरह मनुख नू ऐसा जीवन चाहिए जो असीम होवे और जिस विच कोई मौत ना होवे, ऐसी असीम जिंदगी दा ना ही परमात्मा है। ऐसे असीम जीवन नू ही प्रभु कहिंदे। मनुख नू ऐसा सुख चाहिए, सदीवी सुख चाहिए जो कदी दुख दे च ना बदले, उस परम सुख दा ना ही परमात्मा। मनुख नू ऐसा असीम रस चाहिदा है, ऐसा रस चाहिदा है जो कदी बेरस ना हो, उस महारस दा ना ही परमात्मा। मनुख नू ऐसी शक्ति चाहिदी है, ऐसी प्रभुता चाहिदी है, ऐसी ताकत चाहिदी है असीम, जो कदी कमजोरी देच निर्बलता देच बदले ही ना, तब्दील ना हो। उस महाशक्ति दा ना ही परमात्मा। मंगते परमात्मा दी है, ठीक है, असीम शक्ति चाहिए, असीम जीवन चाहिए, असीम सुख चाहिए, असीम रस चाहिए, असीम आनंद चाहिए, मनुख नू परमात्मा चाहिए, परमात्मा तो बिना और कुछ भी नहीं चाहिदा। मंग ठीक है, प्राप्ति दा साधन गलत है। बस इत्थों जिंदगी गलत हो जाती है, इत्थों ही मनुख गलत हो जाता है। मंग तो ठीक है, ऐसा केड़ा है जिसनू सुख नहीं चाहिदा, ऐसा केड़ा है जो रस नहीं चाहता, बेरसी ती किसे नू नहीं चंगी लगती।
ਐਸਾ

संताप पाप सब न सजाओ, क्यों न समझो किलवे को करता घर आए। उनते करते पुरख की बरकत, उनते उसकी हों, हूं थोड़ा की काम, हूं थोड़ा की काम। भरतरी कहिंदे ने चिंता दे चक्र ते ए मेरा गुने होया मन, इनू रखिया हे प्रभु तू, फिर दुख दे सोटे नाल तू चिंता दे चक्र नू घुमाया, दुख वधदे गए, चिंता वधदी गई, चिंता वधदी गई, दुख वधदे गए, दुख वधदे गए, चिंता वधदी गई, चक तेजी नाल घुमदा गया, घुमदा गया। चिंता तुर मनुख कीर्तन नहीं सुन सकता, चिंता तुर मनुख कथा भी नहीं, वो तो चक दे उत्ते कुमरे कुमरे, चिंता तुर मनुख पाठ भी नहीं कर सकता, चिंता तुर मनुख सेवा भी नहीं कर सकता, वो तो घुमरे। दुख मांज दुख होर, लाभ होत सांझ भोर, दंड जोर जोर कर फेरे चल करे। फिर अग्गे जड़ी गल कही है बड़ी कीमती, फिर हे प्रभु हे कुमार तू फिर मेरे मन रूपी मिट्टी चो की बनाया, अत्र मित्र गल्लब पर गल्लब कुलाल विद कोने विद करे विद वे तो घरे घरे हैं। इस तरह दे तू घड़े बना देते, ए मेरा अपना है, ए मेरा बेगाना है, ए शत्रु है, ए मेरा मित्र है, ए मेरा पुत्र है, ए मेरा मित्र है, मेरी पत्नी है, ए मेरे मां बाप ने, मेरा भरा है, मेरी संपदा है, मेरा घर है। बड़ा पसारा तू मेरे मन चो बना देता, सब मन चो। तो जे इतना सारा पसारा मन चो बने है, तो मन नु समेटदे हैं सारा पसारा खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। धर्म दी मूल साधना है मन नु एकाग्र करना, मन का एक होना, सावधान होना, सारा पसारा खत्म हो जाता है। सारा पसारा जब खत्म हो तो प्रकाश किरण दिच लीन हो जाता है। जैसे प्रकाश किरण दिच लीन हो जाता है, यकीन जानो किरण सूरज दिच लीन हो जाता है। इसे नु कहे सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। जो मन बनया सी ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने मैनू कुछ इथे बैठे अनुभव बख्शे सन, वो हुण मैं बयान करा ते कम से कम मैनू चार पांच दिन हो लगन गए, अंदर एक हड़ चले। पर मैं हुण वर्का इथे ही समाप्त करना, किताब इथे ही टपना, समा हो गया, वक्त हो गया। ये पसारा जो प्रकाश करके प्रकाशित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, मन दे एकाग्र होंदे सारा पसारा सिमट जाता है। परतरी इंज कहते फिर मन आत्मा दे चलीन हो जाता है। पर जैसे मन आत्मा चलीन होया, आत्मा परमात्मा चलीन हो जाती है। इस तरह की लीनता की अवस्था नु गुरबाणी फिर इंज बयान कर दी है, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। इस प्रसंग नु मैं फिर किसी जगह संपूर्ण करांगा, ये ठीक है मैं दो दिन होर इत्थे है। अज शाम नु दास ने श्री गुरु सिंह सभा विकासपुरी हाजरी भरनी है, कल सवेरे श्री गुरु सिंह सभा साउथ अनारकली जमुना पर उथे दास ने हाजरी भरनी। इसे तरीके दे नाल कल शाम दी हाजरी श्री गुरु सिंह सभा प्रशांत विहार विच 24 तरीक गुरुद्वारा संतपुरा तिलक नगर बाबा धर्म सिंह जी का अस्थान उत्थे हाजरी भरनी है। 24 तरीक शाम दी कालका जी श्री गुरु सिंह सभा उत्थे दास ने हाजरी भरनी है। कोशिश तो यही होगी, पर पता नहीं कलगीधर पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज केड़ी बाली खोलते ने, केड़ा बुआ खोलते ने। इस तों बाद दास ने अलवर चले जाना है, क्योंकि एक

है मर्यादा ने एम्स तो अगां चल के की होया जिंदगी इतनी बेमर्यादा हो गई मंदरां देच देवदासियां आ गई मंदरां देच मास दा प्रसाद मिलन लग पया अज भी काली दे मंदर कलकत्ता कुमुखिया देवी दा मंदर गुवाहाटी मास दा प्रसाद शराब दा प्रसाद है अज भी भैरव काल मंदर उजैन होर कई मंदरां अज भी अज भी देवदासियां जो एक तरीके नाल वैश्यामा बन गई मर्यादा नहीं गल खत्म लीला सीमा तो अगा चल के भ्रष्ट हो गए जैसे कि नौजवान भ्रष्ट हो जाता है दुआपुर नौजवानों का युग समय का जवान हो जाना तो जैसे जवान का जोश काबू च नहीं आता जब मैनू कोई जवान मिलता है कहिंदा है मस्कीन जी और सिलसिला देख के तो साडा खून खोलता है तो मैं कहा खोलना ही चाहिए जे नहीं खोलता तो तेरी जवानी ते भी शक किया जा सकता उम्र ही ऐसी तो उम्र ही ऐसी इस उम्र च नहीं खोलेगा तो और कदों खोलेगा तो खोलता है पर यह सीमा च होना चाहिए। धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं मिलिया बुढ़ा युग बुढ़ा युग बुढ़े कोल ज्ञान बड़ा होंदा है जिंदगी दी पौड़ियां ते ज्यादा चढ़िया है बचपना भी उसने देखिया जवानी भी उसने देखी है होर लंबे चौड़े उतार चढ़ाव भी उसने देखे ने तो बुढ़ा सियाणा बड़ा होंदा इस वास्ते पुराने जमाने दे कहिंदे सन बुढ़े का बजुर्ग का सत्कार कर पर बुढ़ा चलाक बड़ा होंदा है तार्किक बड़ा हो जाता है सियाणा बड़ा ये युग बड़ा सियाणा है अज कॉलेज यूनिवर्सिटियां विश्वविद्यालय कदम कदम देते स्कूल इतनी विद्या पहले नहीं सी जिहड़ी अज है इतनी सियाणप पहले नहीं सी जितनी अज है पर इस सियाणप दे आसरे देते इतनी चलाकी इतना वल छल पहले नहीं सी जितना अज है क्योंकि सियाणा बहुत हो गया युग सियाणा सियाणप का हंकार बड़ा होंदा है ये मैं अर्ज कर देना घूम फिर के अज तक मेरा जिंदगी का यही तजर्बा है बाकी धर्म में देखे सिख धर्म भी मैं देखे वह बंदे तर्क कर लग पैंदे जिहड़े इस मार्ग के पांधी भी नहीं ने बड़े सोहने सोहने ग्रंथां ते तर्क कर लग पैणगे बड़े बड़े महान ब्रह्म ज्ञानियां ते तर्क कर लग पैणगे उन्हां दी लेखणी ते तर्क कर लग पैणगे तर्क इत्थे तक चली गई है ये गुरु भी इन्हां कोल बचे नहीं ये भी मैर्ज करते बस इतना ही मैं कह दें और अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कह लेंगे अस पढ़े लिखे हैं ये अनपढ़ ज्ञानियों की तरह असी नहीं हाँ पढ़े लिखे हैं तो असी पंजा साहब नहीं मनते असी रेठा साहब नहीं मनते असी वह भी नहीं मनते असी वह बाणी भी नहीं मनते असी वह भी नहीं मनते लिखतों के बोल बोल के तर्क की थां ते कुतर्क सियाणा युग है बहुत सियाणा युग है पढ़ा लिखा युग है पर मैं अर्ज करा बहुत सियाणा ही कुतर्क कर सकता है तर्क कुतर्क बन सकती है भोला मनुख अनपढ़ मनुख की करेगा तर्क सियाणा युग है तो आज जितनी तर्क है पहले नहीं सी गुरु नानक देव जी ने यह देखा और गुरु पुरुषोत्तम अवतार ने उन्होंने लीला नु मर्यादा नाल जोड़िया है मर्यादा नु लीला नाल जोड़िया है गीत संगीत श्री कृष्ण की जिंदगी सी नचते सन टपते सन गोपियां नाल लेके भी नृत्य करते सन पर नहीं संगीत ते है गुरु घर दे च भी मर्यादा च ढोल मृदंग ते तबले ते वजन गए मर्यादा दे च वजन गीत ते इत्थे भी गावने हैं मर्यादा दे च लीला नु मर्यादा नाल जोड़िया है मर्यादा नु लीला नाल जोड़िया है इस गुरु पुरुषोत्तम अवतार ने ऐसा संयोग बनाया है वह मर्यादा भी नहीं जिस ते सच कुर्बान हो जाए वह लीला भी नहीं के मनुख नु भ्रष्ट करके रख देवे सारिया मर्यादावां नु तोड़ के रख देवे गुरु पुरुषोत्तम अवतार तो एक कैसा हो सकता है उन्होंने मनुख नु जिहड़ा नाम दिता अपने धर्म नु जिहड़ा नाम दिता सिख सिख का मतलब तो शिष्य है मैं सीखना चाहना मैं कुछ भी नहीं जाना कम से कम सच बारे

नरक विश्राम बहुजने भरमावणे चित्त हरणं त्रैलोक गमन जप तप शील बेदारणे अलप सुख अवित चंचल ऊंचे नीचे समावणे तव भय भुमंचित साध संगम ऊट नानक नारायण। धार्मिक दुनिया विच काम एक ऐसा विषय है, एक ऐसा प्रकरण है, एक ऐसा मजमून है जो अछूता है, जिसते बहुपक्षी विचार नहीं हुई, जे किधरे हुई है इशारतन खुल के नहीं हुई, जे किधरे हुई है दबे हुए अल्फाजां च खुले शब्दां दे च नहीं, उसका एक कारण भी दिखाई देंदा है। मनुख दा लोभ बार प्रगट होंदा है और बार भी वो कृत है, धन दी पकड़, पदार्थां दी पकड़ और उस लई भज दौड़ दिखाई दे जांदी है। क्रोधातुर मनुख दा क्रोध भी एक ऐसी कृत है जो बार किसे ते प्रगट होंदा है, दिखाई दे जांदा है। ये ते इस वक्त क्रोध दे जी रहे है। अहंकार बोलां दे राही तरह तरह दी कृत दे राही प्रगट हो जांदा है, दृश्यमान है। काम एक अंदरूनी वेग है, एक अंदरूनी बिरती है, एक अंदर दा उछाल है। शायद ये कृत भी अंदरूनी बन गई, पर्दे विच बन गई। क्रोध कृत प्रगट है, लोभ कृत प्रगट है, अहंकार प्रदर्शित होंदा है, लेकिन काम पर्दे विच होंदा है, छुप के होंदा है। इस कृत नूं सब तो छुपाया जांदा है, हर एक तो छुपाया जांदा है। शायद इसे वास्ते काम दी कोई खुल के चर्चा नहीं हुई। इस दे संबंध विच महापुरुषां ने खुल के कुछ लिखिया भी नहीं है। लिखे हुए ग्रंथ मिलते ने क्रोध दे उते, लोभ दे, अहंकार दे, मोह दे, लेकिन ए विषय बड़े बड़े सतपुरुषां दी कलम तो भी अछूता रह गया। और मूल कारण यही दिखाई देंदा है कि काम कृत मनुख सरेआम नहीं करता है। ये गल वखरी है कि पशु सरेआम कर देने, पंछी सरेआम कर देने और इस कृत नूं दिनदिश कर देने, जबकि मनुख ने इस कृत नूं रात लई चुने है। पढ़दा ते फिर रात दा पढ़दा, छुप के फिर रात दा अंधकार। यही कारण है कि इस दी विचार भी किधरे होई है बहुत तारीकी देच, बहुत पर्दियां देच, बहुत छुप छुप के होई है। क्रोध दी चर्चा मनुख सरेआम करता है, अहंकार दी गल भी सरेआम करता है, बहस मुबासे देच मोह दा भी जिक्र आम चलता है, लेकिन काम इसकी विचारधारा, इसकी चर्चा, इसका बहस मुबासा भी करन लई मनुख किसे
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨੀਆ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈਏ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਛੂਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਵਾਤਸਾਇਨ, ਕੋਕਾ ਪੰਡਿਤ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੇ ਕਾਮ ਸੂਤਰ ਲਿਖੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਲਿਖੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸੇ, ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਲੇਖਣੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖੇ ਕਿ ਲੋਭੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ ਔਰ ਲੋਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਭੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵਾਤਸਾਇਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਕਾ ਪੰਡਿਤ ਨੇ, ਕਾਮ ਸੂਰਤ ਸੂਤਰ ਜੋ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਾਮ ਉਭਾਰਨ ਲਈ, ਕਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੀਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਸਾਇਨ ਦੇ ਕਾਮ ਸੂਤਰ ਜਾਂ ਕੋਕਾ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਕਾਮ ਸ਼ਾਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਅਤਿਅੰਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਛੂਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਛੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਾਮ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ ਕਾਮ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ, ਕਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਮ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਮ ਕਾਮ ਹੈ, ਕਾਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਅਧਿਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਮ ਕਾਮ ਜੀਵਨ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਲਾਂਜਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
शायद इसे वास्ते ही धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने कि काम अनंत जूना दे पाण दा कारण बनता है। जीवन भटक के रह जाता है अनंत जन्मा तक। आप साफ फरमान कर देने, हे काम नरक विश्राम बहु जौनी भरमावण है। इसकी मूल व्याख्या तो इंज बनती है, जब जन्म काम तो होया है तो काम की अंश जीवन दे होगी, लाजमी होगी। जैसे मां बाप तो शरीर आया है तो शरीर दे मां बाप की अंश मौजूद है। मां की रकत पिता बिन धारा, पातशाही भी फरमान करते ने, पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी। पिता का मैला पानी, मां दी लाल मिट्टी, माटी गोरी गेरवी लाल, इस माटी की पुत्री जोरी। ए गेरवी लाल मिट्टी ते मैला पानी इस दी सहयोग दे नाल ए मनुखी तन दा पुतला बनिया। मिट्टी ते पानी दा मिश्रण कीता एक वेग ने जिसका नाम है काम। इस वेग ने मिट्टी ते पानी नू जोड़े है तो इस पुतले विच मिट्टी है पानी है वो वेग भी है। मां दा खून भी है पिता दा बिंद भी है इस काया विच, लेकिन काम दा वेग भी है जन्म तो ही। इस बिंद नू इस खून नू असी काया विचों कढ़ नहीं सकते, ते जिथे उस बिंद नू उस खून नू इस काया विचों नहीं कढ़ सकते तो काम नू भी नहीं कढ़ सकते, क्योंकि तिन्हां दे मिश्रण दे नाल ही ते काया दा इह ढांचा बनिया है, इह पुतला बनिया है। पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी। बड़ा सुंदर यह पुतला बनिया। तो सतगुरु देव जी महाराज काम दे त्याग दा उपदेश नहीं दे रहे। इस उपदेश दे च है काम दे प्रति संयम। जैसे बकायदा आयुर्वेद ग्रंथ कहंदे ने, भूख लगे खादा होया भोजन दारू है, औषधि है, अमृत है, पर भूख नहीं एक एक बुरकी पाई हुई ए रोग पैदा करेगी। शरीर की लोड़ नहीं तू दे रहे हैं। काम दा वेग शरीर की अधिक शक्ति है जो शरीर दे च नहीं समा सकती। वो अधिक वेग परबलवासना बनता है, काम बनता है। इसका निकास सही ढंग नाल हो सके, संयममयी हो सके, बकायदा शिक्षा है दीक्षा है मर्यादा बनाई गई है। लेकिन काम शरीर का हिस्सा है, सोचनी का नहीं। अज के समय दे काम चिंतन का हिस्सा बन गया, काम सोचनी का हिस्सा बन गया। शरीर दे ते है ये मन दे भी हो गया, चिंतन दे आ गया, सोचनी दे आ गया, विचारां दे आ गया। ता ही ते आज जितना साहित्य बाजार दे बिक रहा है, लोकी खरीद के पढ़ रहे ने, उस साहित्य काम ही काम है।
ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਸੋਚਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵ ਸੂਰਤ ਗਰ ਅਫਸਾਨਾ ਨਵੀਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾ ਪਰ ਔਰਤ ਸਵਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵ ਸੂਰਤ ਗਰ ਅਫਸਾਨਾ ਨਵੀਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾ ਪਰ ਔਰਤ ਸਵਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਨਾਵਲਿਸਟ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਹੀ ਕੌਮ, ਕੌਮ ਹੀ ਕੌਮ ਛਾਇਆ। ਮਾਨੋ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਕੌਮ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮਾਨੋ ਕੌਮ ਹੀ ਕੌਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਫਿਲਮਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਸ਼ੀ, ਤਸਵੀਰ, ਸਭ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੌਮ ਚਿੰਤਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਸੋਚਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਯਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਮ ਬਣਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਹੀ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਛਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਸੋਚਣੀ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਗ੍ਰਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਰਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੋ ਜਗਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ, ਹਮ ਕਹੀਅਤ ਕਲ ਜੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ। ਹੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਕਾਮੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਇਸ ਕਾਮ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਤੇ ਨੇ ਕਾਮਨਾ, ਪਰ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਯਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵਨ ਤੋਂ ਕਾਮ ਲੋਭ, ਕਾਮਨਾ ਸਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਕਾਮ ਅਹੰਕਾਰ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਕਾਮਨਾ ਬਹੁ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਲੋਭ, ਕਾਮ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਲੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਕਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਾਮਨਾ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਹੈ,
यही कारण है कि काम दे अर्थ ही बन गए वासना, काम दे अर्थ ही बन गए रूप। रूपे कामे दोस्ती, रूपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंड। जैसे स्वाद सारा भुख दे च है, इतना भोजन दे च नहीं, तो वासना रूप दे ही आकर्षित होंदी है, रूप दी तरफ खिंचदी है। तो काम ते रूप दी दोस्ती बन गई। एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखे है, वो कहिंदा है, जब हुसन नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गिले दीवार पर शैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पर शैदा नहीं होता। दीवार देते जो फुल बने होया है, कोई बुलबुल उसते नगमे नहीं अलापती, नहीं चहचहांदी, नहीं गीत गांदी, क्योंकि तस्वीर है, हुसन दी तस्वीर है, हुसन नहीं, रूप दी छाया है, रूप नहीं। तो पंछी सियाने ने छाया ते आशिक नहीं आंदे, छाया ते फिरा नहीं आंदे, रूप ते स्वप्न ते। मनुख ते किसे किसे थां पंछियां तो भी गया गुजरिया है, इते तस्वीरां ते भी मोहित है, चाहे चलदी फिरदी तस्वीर है जैसे कि फिल्मां, चाहे पत्थर दे उकरियां या तस्वीरां ने, चाहे तरह तरह दी इल्मे मसूरी है, चित्रकारी है, मनुख ते उस ते भी फिदा होया पे। यही कारण है कि फैश तस्वीरां वालियां मैगजीन्स बहुत बिक रहे ने, बहुत पढ़े जा रहे ने, और उन्हां तस्वीरां नूं मनुख देखदा है, खूब देखदा है। दूर क्यों जाओ, मनुख दा ए वेग किसे समय इतनी शिखरता ते पहुंचिया सी कि जमीन दे मंदिर भी काम दे बने, राम दे नहीं, जैसे के खजुराहे दे मंदिर, कोणार्क दे मंदिर, जगन्नाथ पुरी दियां पत्थर ते उकरियां तस्वीरां मूर्तियां। हैरानगी है, खजुराहे नूं देखण लई देश विदेश तो भीड़ पहुंचती है, और छोटा जिहा कस्बा लेकिन चारों पासे फाइव स्टार होटल भी ने, एयरपोर्ट भी है, खूब जांदे ने सैलानी, और सैकड़े एकड़ विच फैले हुए इना मंदरां नूं देखण लई। की है इना मंदरां विच, कोई कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, किसे संत दी मूर्ति दे दर्शन करन जा रहे ने, किसे अवतार दे चित्र दे दर्शन करन जा रहे ने, कता ही नहीं। उत्थे जो मूर्तियां ने वो काम दिया मूर्तियां ने, वासना दिया मूर्तियां ने, मनुख वेखण जा रहा है, मनुख दे अंदर दी वासना इसनु मजबूर कर रही है, एक कोणार्क जांदा है, जगन्नाथ पुरी दियां बार दियां तस्वीरां देखदा है, और खजुराहे दे मंदिर देखदा है। इस तो स्पष्ट होंदा है कि मनुख दे इस वासना दे वेग ने मंदिर भी बनाए ते वासना दे बनाए, प्रार्थना दे नहीं, मंदिर भी बनाए ते काम दे बनाए, राम दे नहीं। हुन इस सदी विच, इस युग विच ते दिल दिमाग दते एक काम ही छा गया, हर पासे इस दी विचार, इस दी प्रदर्शनी अखबारां विच, शायरी विच, फिल्मां विच, साहित्य विच
तरह तरह दी तस्वीरां विच और चारों पासे इतना काम दा प्रगटावा होवे प्रचार होवे तो कोई ध्यानी कोई साधक राम दा चिंतन करे इस युग विच कठिनाई है अगर वो कर सके तो महान है। भगत रविदास जी महाराज नु इत्थे ही दुख तो के कहना पिया तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी हम कहियत कल युग के कामी। इसी काम दे हड़ देच बह गया समुच्चा मगरिब यूरोप अमेरिका कनाडा और बदकिस्मती है ये भारत जो सदियों तक धार्मिक देश रहा है और धर्म दी महिमा इत्थे बड़ी प्रगाढ़ रही है। अफसोस ए भी अज यूरोप दी नकल कर मगरब दी नकल कर पच्छम दी नकल कर काम दे वेग दिच बह गया काम दे दलदल दिच फस गया। और यही कारण है कि राम दा चिंतन घटदा गया घटदा गया। हुन मोची ते कदम कदम ते बैठे मिलदे ने जुतियां गंढण वाले किसे रविदास दे दर्शन नहीं आंदे। कपड़े बुनण वाले ते बहुत मिलदे ने कबीर दे दर्शन नहीं आंदे। नाई ते बहुते ने सैण किथे कपड़िया नू रंगण वाले ते बहुते ने पर नामदेव किथे चेतने महाप्रभु ए किथे। हुन कोई मीरा एक तारा लेके भजन दिश डुबी होई नहीं दिखाई देंदी। हुन कोई माता भाग कौर सुरवीरता दी मूर्ति नहीं दिखाई देंदी। समो जगत इसे ही वैण देच वह तो रहा है इसे ही हड़ देच वह तो रहा है। और धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक देच इसी वेग दा जिक्र कर रहे ने। हे काम नरक विश्राम बहुजोनी भरमावणे चित हरणं त्रैलोक गमन जप तप सील बेदारणे। हे काम तू कीते हुए जप नू कीते हुए तप नू शील नू भंग करन वाला है। ना तू संजम रहन देना है ना तू शर्म रहन देना है ना तू जप रहन देना है ना तू तप रहन देना है। इतना चंचल कर देना है कि मनुख लई राम दा चिंतन कठिन हो जांदा है। नहचल नाल जुड़ना कठिन हो जांदा है। चंचल दा मतलब है चल चल चल। इतना चलाए मान कर देना है मन नु वो जो नहचल है नहीं चलदा टिकया होया है उस नाल टिकना उस नाल जुड़ना कठिन हो जांदा है। और जीवन चंचलता दे वैण देच बह तुरदा है। अगम्मी महान मिलिया ए जीवन काम दी भेट हो जांदा है। जदके जीवन मिलिया सी राम नू भेट करन लई हो गया काम दी भेट। अगर काम प्रार्थना बन जाए तो राम प्रगट आउंदा है। काम वासना बन जाए तो फिर जीवन काममय हो जाता है। काम दा रूप बन जाता है वासना दा रूप बन जाता है। हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनी भरमावणे चित हरणं त्रैलोक गमं
जप तप सील बिदारणे अलप सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावणे तव भय भुमंचिते साधु संगम ओट नानक नारायण। हार गया वो जीवन दी बाजी जो काम आश्रित हो गया, जीत गया वो जीवन दी बाजी जो राम आश्रित हो गया। कामना राम दी करिए मनुख सदाचारी बन जांदा है, कामना वासना दी करिए दुराचारी बन जांदा है। और वासना दी कोई सीमा नहीं, कामना दा वेग वासना नू वधांदा है, वासना दा वेग कामना नू वधांदा है। और इस तरह जीवन दर जीवन जिंदगी काम आश्रित हो जाती है। सतगुरुदेव जी महाराज कहते त्रै लोक गवन, सिर्फ मनुखा तक ही ऐ वासना तेरी पहुंच नहीं, तू ते तीन लोकां दे छाई हुई है, पशुआं दे चैं, पंछियां दे चैं, मनुखां दे चैं, जिन्हां नूं असीं देवता कहिंदे आ, ये भी सही वासना करके भ्रष्ट होए। उन्हां दे अंदर भी कामना वासना दी ही चलदी रही। देवतियां दे सिरमौर देवते मने जांदे ने इंद्र, और ये असीम वासना करके काम करके भ्रष्ट होया। और वाकई काम वासना मनुख नु अंधा कर दे दिए, इतना अंधा हो गया ये भ्रष्ट होया है। एक वक्त दा सिरमौर संत गौतम ऋषि उसकी पत्नी अहिल्या थे, जो एक देवी दे समान सी, इसने उसनु वेसवा बनाया। जदके देवते दा कम है वेसवा नु देवी बना देना, पर एक ऐसा देवता वाकई काम देवते नु भी भ्रष्ट करके रख देंदा है, मनुखा नु भी भ्रष्ट कर देंदा है, पशु पक्षी ते इसी दलदल विच फसे हुए ने। बड़े बड़े जपीश्वर तपीश्वर लोभ दा ते त्याग कर गए, अहंकार नु भी सुट के परे भज गए, सता छोड़ देती, लेकिन रूप दा चिंतन अक्सर चलदा रहा, वासना मजबूर कर दी रही, रूप दा चिंतन चलदा रहा। कहानियां ने गाथावां ने इंद्र स्वर्ग तो अपछरा भेजदा है, किधरे मेनका किधरे उर्वशी किधरे तप भंग आंदा है विश्वामित्र दा, किधरे भ्रष्ट आंदे ने श्रृंगी ऋषि, किधरे वासना दे दलदल विच फसदे ने महान योगी राज मच्छंद्रनाथ। दरअसल कोई स्वर्ग तो किसे अपछरा नूं नहीं भेजदा, वासना कल्पना दा स्वर्ग खड़ा कर देंदी है, कल्पनावां दियां हूरां खड़ियां कर देंदी है, कल्पना दियां अपछरावां खड़ियां कर देंदी है। बैठा सी राम दे चिंतन विच, चिंतन चल पिया होरां दा, बैठा सी प्रभु सिमरन विच, सिमरन चल पिया अपछरां दा, कल्पना दा स्वर्ग। और जद कल्पना दे स्वर्ग विच अपछरा होवे, होरां आवन,
तो वास्तविक जगत जो हकीकत दा जगत है इस दे जिस ऋषि नूं भ्रष्ट होंदिया देर नहीं लगेगी। जो कल्पना सी साकार हो जाती है तो भ्रष्ट होए विश्वामित्र, भ्रष्ट होए श्रृंगी ऋषि, भ्रष्ट होए ऋषि महान योगी मच्छंद्रनाथ। ये आम साधारण मनुख नहीं ने जिन्हां ने विचारां दी शिखरता नूं छोया सी, जिन्हां ने जीवन दियां बुलंदियां नूं भी वेख्या सी, जिन्हां ने प्रभु सिमरन दी गहराइयां नूं भी देख्या सी, फिर भी वासना, फिर भी कामना और कामना विच वासना और वासना दी ही कामना, इस तरह काम वासना करके ए ऋषि ए जोगी ए बड़े बड़े जपीश्वर ए बड़े बड़े तपीश्वर भ्रष्ट होंदे रहे, इसी दलदल विच फसते रहे। जीवन सफल करन लई आए सन, जीवन निष्फल हो गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फुने छंद विच इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की थी। और धन जाइए, सदके जाइए, कुर्बान जाइए गुरु अर्जन देव जी महाराज तो, जो बड़े बड़े बारीक विषयां नूं भी बड़ी बारीकी नाल छूंदे ने और विस्तार से प्रगट करते हैं। धन गुरुदेव जी महाराज दा वाक, पंकज फाते पं महामद गुंफिया अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। पंकज, पंक कहंदे ने चिक्कड़ नूं, पंकज पंक तो जमया, पंकज पंक ने जिसनु जमया है, कमल पदम चिक्कड़ दी पैदाइश है। कमल दियां जड़ां चिक्कड़ दे चने दलदल दे चने, पर स्वप्न महक खेड़ा उपर है, चिक्कड़ तो भी उपर, पानी तो भी उपर। कई दफा ऐसा होंदा है पानी घटता है, कमल दी बुलंदी भी घटती है। जो गगन नूं चुम रहा सी धरती दी तरफ डिगण लग पैंदा है क्योंकि पानी घट गया। पानी पदार्थ, पानी सुख पदार्थां दा, परिवारिक सुख पदार्थां दा, सुख धन दा, सुख मनुख गगन नूं चुम्मण दी सोचदा है, लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिता है। वाकई धन

कीर्ति अत्यंत कामी हो गया। जद सुनदे आ किसे नवाब दियां 500 बेगमां, किसे राजे दियां 400 राणियां, किसे शेख दियां 100 बेगमां, हैरानगी क्या जिंदगी इसे लई, चिक्कड़ तो जमया चिक्कड़ विच फस के रह गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ने पंकज फाते पंग महामद गुम्फिया अंग संग उरझाए बिसरते सुम्फिया। ऐ कमल तू अपनी महक भूल गया, अपना स्वप्न भूल गया, अपना खेड़ा भूल गया, चिक्कड़ विच फस के रह गया। बड़िया बड़िया जिंदगियां खिड़िया हुई गगन चुंबी इस चिक्कड़ विच गर्त होंदिया देखिया ने, फसिया हुई देखिया ने, इतिहास भरिया गया। और हैरानगी क्या जीवन सिर्फ इसे लई है, नहीं संभाल सकिया इस हड़ नूं, जितना धन वधिया जितने पदार्थ वधे उतना ही कामी हुंदा गया, जितने दुनियावी सुख वधे उतना ही कामी हुंदा गया। इदी वाशना इदी काम वाशना इदी कामना बार बार जाके रुकी स्त्री ते। वैसे ते कामना एक सर्कल दिच दौड़ दी है, एक घेरे दिच एक वर्तुल दिच। पुत्र दी कामना मिल गया पुत्र कामना अगे गई, मित्रां दी कामना मिल गया मित्र कामना अगे गई, धन संपदा दी कामना अगे गई। ए वक्ती तौर के आके रुकदी है इस्त्री ते। तो साहित्यकारा ने साडे देश दे धार्मिक पुरुषां ने इस्त्री नूं एक नाम दिता है कामनी, कामना दी मणि, जिथे मनुख दी कामना आके रुक जांदी है वक्ती तौर ते, घुमदी है फिर आके स्त्री ते रुकदी है, घुमदी है फिर आके स्त्री ते रुकदी है। स्त्री बन गई कामनी, स्त्री दी कामना घुमदी है रुकदी आके पुरुष ते, तो पुरुष बन गया कामदेव, एक कामदेव एक कामनी। स्त्री ते पुरुष दा ए मिलन कामना दी मणि ते कामदेव दा मिलन होके रह गया, जदके इते होना चाहिदा सी ज्ञान दा मिलन भक्ति दा मिलन मिलन। स्त्री नू ज्ञान मिलदा पुरुष नू भक्ति मिलदी, पर नहीं, पुरुष नू मिली कामनी स्त्री नू मिलिया कामदेव, ज्ञान देव रह गया भक्ति देवी रह गई, भक्ति दी मणि रह गई। पुरुष दी चमक दमक मत्थे ते उस दिन प्रगट होवेगी जिस दिन भक्ति दी मणि इस ते मस्तक दे चमके, और स्त्री दा मस्तक उस दिन चमकेगा जिस दिन ज्ञान दा प्रकाश ज्ञान दा सूरज उस दे मकसद मस्तक ते जो है चमके। पर स्त्री पुरुष दा मेल ए ज्ञान ते भक्ति दा मेल ना हो के इते कामना दी मणि ते कामदेव दा मेल होके रह गया। परिवारक रिश्ते ए ज्ञान ते भक्ति दे रिश्ते ना रह गए, इते काम देव ते कामना दी मणि। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते ऐसा भी प्रमाण कर देने छले कनक कामनी, छले आ गया मनुख देच तोखा खा गया मनुख कामनी तो कनक तो, जिंदगी बर्बाद हो गई, जीवन भ्रष्ट होके जहर रह गया। भक्ति दी मणि चमकनी चाहिदी सी, काम मणि चमक रही है कामनी, ज्ञान दा प्रकाश मस्तक ते होना चाहिदा सी कामदेव चमक रहे है।
और ए मिलन अगर कामदेव ते कामणी दा होया और जीवन भर ऐसा होया तो इस तो जो औलाद पैदा होवेगी वो कोई ऋषि मुनि दार्शनिक संत भगत ज्ञानी नहीं होवेगी। वो औलाद कैसी होवेगी? धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान करते हैं।

इस दौर देच, इस कामी युग देच, हम कहियत कल युग के कामी जो संतान पैदा हो रही है, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार जिन भूत पैदा हो रहे हैं, पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदा, पुत ते जिन भूत है ती भी जिन भूत है, कोई मीरा नहीं पैदा हो रही, माता भाग कौर नहीं लैला पैदा हो रही है, कोई कबीर कोई रविदास कोई भाई मनी सिंह कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे, मजनू पैदा हो रहे। क्यों? मां बाप शरीरक तल तो उच्चे ही नहीं उठ सके, दोहां दा मिलन पहले शरीरक होवे, सहजे सहजे ए जद शरीरक तल तो उच्चे उठन उस समय इन्हां दे घर औलाद आवे, भगत आणगे दार्शनिक आणगे विज्ञानक आणगे संत आणगे, पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके, वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके और इसे दल दल दे फसे रहे, तो औलाद आएगी जिन ते भूत, जिन्ना ते भूता नाल ए युग ए संसार भर गया है। जिन भूत जो अदृश्य रूप दे पहले कर्म करते सन, दृश्यमान रूप दे ए मनुख आज कर रहे हैं। जिन भूतां नू काबू करना औखा सी, अजो की औलाद नू काबू करना औखा है, बहुत औखा है, कठिन है। ए कॉलेज स्कूलां दियां कुर्सियां तोड़ रहे ने, उस्तादां नू मार रहे ने, तरह तरह दे कुकर्म कर रहे ने, और किधरे भी सील नहीं संयम नहीं। उसका मूल कारण है मां बाप दा जीवन प्रार्थना नहीं बन सकया, वासना ही बनिया रहा। मां बाप दा जीवन राममय नहीं हो सकया, सिर्फ काममय होके रह गया। पातशाह कहंदे ने रन्ना होइयां बोधियां, पुरख होए सयाद सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज। रन्ना होइया बोधियां, स्त्रियां बहुत चंचल बहुत चंचल, दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नु देखना, यही उन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया। भगत कबीर भी कहंदे ने वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी, जिथे वेद पढ़दियां पढ़दियां पंडित इसे जी खप गए, उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे जी खप के रह गई। रूप पेख पेख नारी, स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है पर महसूस कर दी हां हूं ठीक है, फिर विखाण लई निकलदी है। रूप दी प्रदर्शनी, शरीर दी प्रदर्शनी, और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा। मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकदा कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे। हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे, रूप नु वेखना ते विखाणा यही जिंदगी दा लक्ष्य होवे तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा हटदा जाएगा हटदा जाएगा, अर्ध नगन और फिर अल्फ नगन, इस तरह उसकी प्रदर्शनी होवेगी। पुरख होए सयाद, सयाद शब्द फारसी का है,
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਗਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਅਜੇ ਇਤਨੀ ਧਨਾੜਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਧ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਆਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਧ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੂਬ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਸ਼ ਨਾਵਲ, ਜਿਨਸੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਖੂਬ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਨੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁੱਖ। ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਾਨੀ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਪ ਸੁਖ ਪਵਿੱਤ ਚੰਚਲ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ, ਔਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਚੰਚਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁੱਛ, ਇਸੇ ਹੀ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।

इस ते भय तो डर दे होया। गुरु दी संगत पकड़ी, प्रभु दी ओट पकड़ी, नारायण दा आसरा लिया। बस नारायण दा आसरा, गुरु दी संगत, यही ओट है, यही आधार है।

करोधं कदन करुणाना उपर्जते बिखयंत जीवं वसंकरोत निरतं करोत जथा मरकटे अनेक

भगवान कर धर्म वधे नित रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए उस सच नु सत नु रटन करिए उस विच मन जोड़िए धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है और परोपकार कीते हैं दान पुन कीते हैं धर्म दा ए बूटा सहजे सहजे वधदा है उठदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म दा बूटा क्षमा दे उसे टिकया रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान ढह ना जान तूफानी हवावां उना दिया जड़ा ना पुट देन तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं किसे सोटी दा किसे दीवार दा। तो क्षमा दी सोटी नाल क्षमा दे सहारे खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वधदा है उच्चा हुंदा है उच्चा हुंदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म क्रोध कर होत विभंगा छिन मात्र क्रोध कर दिया धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन पता नहीं कितने दिनों की तपस्या नूं जला के रख दें दी कितने दिनों की साधना कितने दिनों का परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छह महीने साल सिंच के वड्डा कीता है बस एक चिंगारी उसनु भस्म कर सकती है। क्रोध दी छणक अगन छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नु नष्ट करके रख देंदी। क्रोध वास्तविक मूर्खता दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दिया ने। जर्मन दी गल है एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को मुर्दा रोंदी हुई चीखदी हुई। डॉक्टर भी हैरान है जदे मर ही चुके है ते मेरे को ल्याण दा मतलब जदे खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है। डॉक्टर कहिंदा इत्थे मुर्दा है रोंदी हुई बिलखदी हुई ममता दी मारी मांग कह रही है। हां मर गया ये तो ठीक है पर मैं इस वास्ते ले आई है क्यों मरिया है किवें मरिया है मैनू कुछ कारण नहीं दिखाई देंदा। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नु वेखदा है अपनी सियाणप नाल जांच पड़ताल करदा है मां नु पुछदा है ए दस किवें गुजरिया कदों गुजरिया। बस मेरी गोद देसी मेरा दुध पींदियां ही पींदियां ए सिर सुट बैठा है खत्म हो गया। तो मतलब होया तेरा दुध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे नु दुध पिला रही सी तेरी मनोदशा की सी तेरी मानसिक हालत की सी। ये मां कहंदी है मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी बहुत उच्ची बोलचाल चल रही सी ये बच्चा विचकार रोन लग पया मैं इसनु दुध पिलाण लग पई
ਪਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੀਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ। ਜਦ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਬਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਵਸਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ

द्वारों सुन ऐ मोर राजन, मेरी करामात देख। मैं जिस हिरदे च अपना पैर रख देना, वो अपना बिगड़दा होया कम भी नहीं देख सकेगा कि कितना बिगड़ रहा है, मेरा कितना नाश हो रहा है। वो अपनी आत्मा दी आवाज भी नहीं सुन सकेगा। ऐ मोर राजन, तू मैनू भेज के देख। जिंदगी भर जो पड़िया होवेगा, सालां बदी जो पड़िया होवेगा, एक छिन विच मैं बुला के रख देंगा, अनपढ़ बना के रख देंगा। क्रोध विच सड़िया होया मनुख ते अनपढ़ लगता है, क्रोध विच जलिया होया मनुख ते मूढ़ लगता है, क्रोधी ते शैतान लगता है। नहीं महसूस होता कि पढ़ा लिखा होवेगा, ये दार्शनिक होवेगा, ये फिलोसफर होवेगा, ये चातर होवेगा। पढ़ो जितनो खिन माए बेसारो, जीवन भर जो इसने पढ़े है, मैं एक सैकंड भुला के रख देंगा, एक छिन भुला के रख देंगा। क्रोध दी ए महान परबल शक्ति जिसनु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पावन पवित्र वाक संस्कृति श्लोक विच इस तरह बयान करते हैं। हे कलमूल करोधं कदंच करुणा न उपरजते। हे कलेश दी जड़, झगड़े दा मूल क्रोध। झगड़ा चाहे परिवार दे चाहे, मूल क्रोध है। झगड़ा चाहे बाजार दे चाहे, मूल क्रोध है। झगड़ा चाहे सारे शहर दे चाहे, कौम दे चाहे, मूल क्रोध है। ते झगड़ा चाहे सारे संसार दे चाहे, विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वार है, मूल विच ते क्रोध है। हे झगड़े दी जड़, हे कलेश दा मूल, हे कल मूल करोधं कदंच।

जथा मरकटे। हे क्रोध तेरा वासा हुंदा है विषयी मनुखां दे अंदर, जिन्हां दी वासना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी कामना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी तृष्णा अतृप्त रह गई है, जिन्हां दीआं इच्छावां अतृप्त रह गईआं ने, जिन्हां दीआं कामनावां अतृप्त रह गईआं ने, तेरा वासा उत्थे ही आउंदा है। अतृप्त वासना क्रोध बनदी है, अतृप्त वासना गिले बनदी है, अतृप्त वासना शिकवे बनदी है, अतृप्त वासना असंतुष्टि नूं जन्म देंदी है, और ये सब कुछ फिर क्रोध नूं बर्बाद करदा है। ये क्रोध तेरा वासा है विषयी जीवां दे अंदर। नर्तं करोत जथा मरकटे। तू जिस दे अंदर वासा करदा है उसनू इस तरह नचांदा है जिवें मदारी बंदर नू नचांदा है। ए क्रोध तू बंदर दी तरह उस मनुख नू नचांदा है जिस दे अंदर तू प्रवेश कर जांदा है। अनेक सासन

है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र देवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें। तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें। तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उना नू भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनु मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना की जे जे का पार वसा है। लोभी दे भरोसा औखा है, और आज दे युग दे चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नू बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नू मेरे पादशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दित्ती है।

भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, क्रंग विच मुंह मारना, हड्डी विच जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, यह लोभी दी मनोबिरति है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग के एक शब्द विच बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है। एक स्वान दोए स्वानी नाल भल

धान के रूप रहा करतार। हे करतार, धानक हो गया। धानक जो शमशान घाट विच बैठ के उड़ीक कर देने कदों कोई लाश आवे, कफन मिले, भांडे मिलन, पैसे मिलन, कदों कोई लाश आवे, साड़ियां लकड़ियां बिकन, कदों लाश आवे, सानू मेहनताना मिले, साजो समिग्री मिले, जिसदी उपजीविका, जिसदी रोजी, जिसदी उड़ीक किसी दी मौत ते खड़ी है, और जो सवेरे तो लेके शाम तक, रात तक इसे उड़ीक च रवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, ऐसे मनुख दी रूह भी मुर्दा हो जाती है, ऐसे मनुख दा इखलाक भी मुर्दा हो जाता है, ऐसे मनुख दा आचरण भी मुर्दा हो जाता है। शेख सादी ने एक बड़ी सुंदर कविता, शायरी गुलिस्तान विच कीती है। फरमान है उना दा, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त। मैथो इंसाफ दी गल पुछो, बद बख्त कौन है, बद किस्मत कौन है कि दर राह तश रंज दीगर कस अस्त। जिस दी राहत दूजियां दी रंज ते खड़ी है, जिस दियां खुशियां दूजियां दे रोने ते खड़ियां ने, जो दूजियां दी बर्बादी विचों आबादी लभदा है, जो दूजियां दी मौत विचों जिंदगी लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान विचों नफा लभदा है, जो दूजियां दी बेइज्जती विचों इज्जत लभदा है, जो दूजियां दे रोने विचों हासे लभदा है, इते बड़ा बदबख्त, बड़ा बदबख्त। सारा दिन ए उड़ीक होवे, ए सोचनी होवे, मरे किसे घर विच कोई मनुख, मौत होवे किसे दी, खत्म होवे कोई, लाश आवे, मैनू कपड़े मिलन, मैनू साजो समिकरी मिले, मैनू धन मिले, इस तरह दी सोचनी इखलाक दा पतन कर देंदी है। ठीक है, अगर ये पेशा है, धंधा है किसे दा, पर सोचनी विच ना ले आवे, उपजीविका प्रभु ते सुटे, सेवा दे रूप विच करे, सोचे परमात्मा दी तरफों यही मेरी ड्यूटी लगी है, तो ये सारी सेवा करदे होया उदी उपजीविका ते चलेगी, पर उसका इखलाकी पतन नहीं होगा, उदी मनोवृत्ति थल्ले नहीं जाएगी। पर वो ही सिर्फ धानक नहीं जो शमशान घाट विच बैठ के सारा दिन मुर्दियां दी उड़ीक करता है, ते किसे घर विच मौत होवे इसकी उड़ीक करता है, नहीं, सारा संसार ही लोभियां ने शमशान घाट बना के रख देता है, और खुद बैठा है धानक दी तरह, कोई मरे मैनू कुछ मिले, कोई तबाह होवे मैनू कुछ मिले, मैनू कुछ मिलना चाहिदा है, हुंदा है दूजा तबाह ते होवे, मेरे पल्ले कुछ पैना चाहिदा है, खोया जांदा सब दा ते खोया जान दे। इस तरह हर मनुख धानक बन गया, और हर मनुख ने संसार नू शमशान घाट बना के रख दिता। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनू इस ढंग नाल भी बयान किया है, एक स्वान दोए स्वानी नाल भलके भौंके सदा बयान। एक कुत्ता
ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੌਂਕਦਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ, ਭੌਂਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਤੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਉੱਠ ਬੈਠਾ, ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਠ ਬੈਠੀਆਂ। ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭੌਂਕਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਲਏ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ, ਰਾਮ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਲਾ ਨਿਕਲੇ, ਮਜ਼ਾ ਲਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲਵੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਕੁੱਤਾ? ਲੋਭ। ਕੌਣ ਨੇ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ? ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਭ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਸਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਭੌਂਕਦੀਆਂ।

माता भरे जामुरदार न खाए। पराया हक बस यही मुरदार है। अगर हिंदू है तो गऊ खा रहा है और मुर्दा गऊ, मुस्लिम है तो सुअर खा रहा है मुर्दा सुअर, मरिया होया सुअर। पराया हक इतने सुअर खा रहा है मुसलमान, इतने गऊ खा रहा है हिंदू। भारत दी मनाहत कि गऊ सब तो उत्तम है, ये मनुखी मां दी तरह सोचती है। इसका गर्भकाल का समा भी मनुखी मां दी तरह 10 महीने का है। जैसे डार्विन ने किस वक्त कहा कि मनुख दी आखिरी कड़ी बंदर है, बंदर तो विकास करके मनुख इस शक्ल दे आया है। शरीर की खोज है, विज्ञान की खोज, बाहर की खोज है, पर भारत का ऋषि मन की खोज दे संलग्न है। उदी दिलचस्पी मन की खोज दे है। उन्हें देखा मनुख का मन ते गऊ का मन बड़े निकटवर्ती ने। जैसे डार्विन ने देखा बंदर का शरीर ते मनुख का शरीर बड़ा मेल खाता है, भारत दे ऋषि ने देखा गऊ दा मन ते मनुख दा मन बड़े निकटवर्ती ने। हो ना होवे मनुख दी आखरी कड़ी गऊ है, गऊ मरी है तो फिर मनुख बनी है। इस तरह मनुखी जिंदगी दी आखरी कड़ी गऊ हो सकती है, बकोले डार्विन बंदर हो सकती है। अफजल हो गई गऊ, महान हो गई गऊ भारत दे चिंतन देच, देशवासियों दे चिंतन देच, क्योंकि मनुख दी तरह सोचती है, मनुख दी तरह ममता रखती है, मनुख दी तरह दुख सुख महसूस करती है। इसनु मारना ऐसा है जैसे मनुख नु मारना, और इसका मांस खाना ऐसा है जैसे बंदे का मांस खाना। त्रिगत जून है, सुअर बिष्टा खांदा है, गंदगी खांदा है। तो इस्लाम दीवानी मोहम्मद साहब ने हराम करार देता नहीं खाना, ये सुअर नहीं खाना। कि दिन भर बिष्टा खांदा है, गंदगी खांदा है, और फिर इसकी गर्दन की हड्डी इतनी मजबूत इतनी सख्त, ये हलाल नहीं हो सकता, जबा नहीं हो सकता। बहुत तड़पेगा, बहुत तड़पेगा, खाना हराम। पर महाराज कह रहे ने खा रहा है वो सुअर, अगर वो मुसलमान है खा रहा है वो सुअर, अगर वो बेगाना हक खा रहा है, अगर भारत का वासी है हिंदू बौद्ध जैन सिख है, पराया हक खा रहे है गौ खा रहे है। धन गुरु नानक देव जी महाराज देवाक, हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, गुर पीर हमाता भरे जामुरदार न खाए। पर जब लोभ कुत्ता भौंकदा है, आशा ते तृष्णा दो कुतियां भौंकदियां ने,

राजित सूर संग्राम अत बल नाम बहुमर्दने गण गंधर्व देव मानुख पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरे। ज्ञान दे अथा सागर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है, लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां, मनुख दे अवगुण, इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वह गुणा का सागर है, मनुख औगुणा का सागर है। परमात्मा के गुण नहीं गिने जाते, मनुख दे औगुण भी गिनने औखे ही ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे। उंज ते अनंत औगुण ने, अनंत औगुण ने, पर मूल कमजोरियां मूल औगुण मनुख दे पंज ने, जिन्हां नूं इस तरह गणित दे च लिया जांदा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहणे ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तुम इन्हां औगुणां नूं गुणा विच बदलना है। सतगुर मोह तो आरंभ करदे ने, मोह मेरा, मोह मेरा, जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती है, उसे पकड़ नूं कहिंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं, उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उसनूं थोड़ी जी भी चोट लग जाए, खराश लग जाए, टूट भज जाए, तड़प उठती है आत्मा, चीख उठता है मनुख। लेकिन जो मेरा नहीं, जिस विच पकड़ नहीं, जिसका मोह नहीं, चाहे कल बर्बाद होंदा अज हो जाए, कल मिटदा अज मिट जाए, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। घर विच एक बच्चा, मासूम बच्चा बीमार पै गया है, सारा घर उदास हो गया है। मोह है, पकड़ है, मेरा है, लेकिन किसी देश विच किसी शहर विच महामारी करके सारा शहर बीमार पै है, कोई आ नहीं निकलती। क्यों? उस नाल मोह नहीं, वो मेरा नहीं, उस विच पकड़ नहीं। रत्ती जी वस्तु टूट भज जाए, नुकसान हो जाए, आह निकल जाती है, लेकिन बहुत बड़िया किधरे बर्बादियां हो जान अगर उस विच मोह नहीं, वो मेरा नहीं, तो कोई आह नहीं निकलती, कोई चीख नहीं निकलती,
कोई अफसोस नहीं आता। जो मेरा है, जिस विच मोह है, आज नहीं तो कल संबंध टूटेगा। मेरे खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, या जो मेरा है उसके खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। चाहे जो मेरा है वो टूटे या मैं टूट जावा, जिस विच मोह है वो खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जावा, रिश्ता तो टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। बस इसे टूटने का दुख है, इसे टूटने का गम है। जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है उस विच बड़ी भारी पकड़ है, बड़ी भारी पकड़ है। पर कितनी भी पकड़ क्यों ना होवे, हथों ते छुटेगी ये वस्तु, ये हस्ती, जो कुछ भी है, आखिर एक ना एक दिन ते हथों दी पकड़ ढिली होवेगी। जे पकड़ ढिली ना हुई तो जिसनू पकड़े है शायद वही मुर्दा हो जाए, वही ढिला हो जाए। आखिर ते संबंध टूटना है। दुख सारा मनुख दे कोल मोह दा है, मेरे दा है। और जितना मनुख मेरा मेरा करता है उतना ही मोह बच जाता है, और जितना मोह बच जाता है उतना ही दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये मोह व्यापक है, किधरे थोड़ा, किधरे बहुत, किधरे बहुत ज्यादा है। प्रथम मोह परिवार का, सहजे सहजे जैसे जैसे पता चलता है ये मेरा पिता, बच्चे नू जैसे पता चलता है ये मेरी मां, ये मेरी बहन, ये मेरा भरा, और जितना प्रतीत आता है मेरा है, मेरा है, मेरा है, उतना ही मोह बच जाता है, उतनी ही पकड़ बच जाती है। अगां चल के मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी धन संपदा, मेरी कुल, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा स्वप्न, मेरी जिंदगी, मेरे दा पसारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मोह दा फैलाओ जितना वद्दा है, बस मनुख दा दुख भी उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है। मोहग्रसा प्राणी चैन दी नींद सो नहीं सकता, कारण जिस नाल मोह है, जिस देते मेरे दी मोर लाई है, आखरे मोर मिटती है, जिस ते मोर लाई है वो भी मिटता है। बस इतों ही दुख है, इतों बेचैनी, इतों ही संताप शुरू हो जाते हैं। दो चार उदाहरण राही मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। मां बाप का इकलौता बच्चा गालवन पांच छह वरिया का गुम हो गया है, नहीं लभ रहा। मां दियां अखां हर पासे लभदियां ने, पिता दे पैर हर पासे दौड़ रहे ने, दिल हर वक्त याद कर रहा है, अखां छम छम हंजू पईयां वगांदियां ने। जीवन बहुत पीड़ा दे बतीत हो रहा है। जो मेरा सी, जिस च मोह सी, बिछड़ गया। सहजे सहजे विछोड़े दा दुख
धीमा पैदा गया। क्यों? कहते हैं समा सब कुछ नु पाट देंदा है, समा जख्मा नु भर देंदा है। बहुत समा लंग गया, आज 5 साल हो गए उस बच्चे नु गुम होया। अचानक आज किसे ने दर ते दस्तक दिती और उसने आके आख्या, थोड़ा जो बच्चा जो बहुत पहले किधरे गुम होया सी उसनु मैं देखे। जिस हार दी तुसी गल कहंदे सी वो हार उसदे गल दे च है, आके देखो। खैर कुछ हो लिया, हार रंग रूप मेल खांदा वेख के प्यो ने सीने नाल लाया, मां ने अखां विच बिठाया। विछोड़ा मिलाप दे सुख दे च बदलिया, हंजू हासियां दे च बदले, मुरझाना खेड़े दे च बदलिया, दुख सुख दे च तब्दील होया। 5 साल दा विछोड़ा मां ने ममता डुल डुल के डोली, प्यो ने प्यार दे मानो सागर उमड़ा देते। वेख वेख के मां दियां अखां रजदियां नहीं, प्यो दा दिल भरदा नहीं। पालन पोषण इस तरह चल रहा है, दिन लंघदे गए। बच्चा बहुत खुश, उसनु इतनी ममता मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। ओ भी खेड़े च, ओ भी खुशी च, मानो बच्चा मिल गया है, प्यो नु पुत्र मिल गया है, उन्हां दी भी प्रसन्नता। पर अज किसे होर ने आके द्वार ते दस्तक दित्ती, आख्या जिस बच्चे नु तुसी ले आए हो ये थोड़ा नहीं, थोड़ा बच्चा ते मैं वेखे है, वो होर है। इस बच्चे ने उसी बच्चे दे गल चो हार उतार के आप पाया है, आओ थानु दिखाइए। जद जाके मां ने वेखया, प्यो ने वेखया, हुलिया बहुत नेड़े मेल खांदा सी, आवाज मेल खांदी सी, चाल ढाल मेल खांदी सी। मां ने सीने चलाया, प्यो ने उंगल पकड़ी उस बच्चे दी, कर लिया है। नजरां जिस हुण लैंदे बच्चे ते टिकियां, पहले लैंदे तो नजरां फिर गईयां। हुण अखां विच ते उस लई था नहीं सी, घर विच भी उस लई मानो था नहीं सी। धारा मोह दी बदल गई, दूसरे बच्चे ते टिक गई। सारा प्रेम सारी ममता मां ते पिता दी इस नवे लैंदे बच्चे देते डुलन लग पई। पहला मायूस रहन लग पया, दुखी रहन लग पया। जैसे बूटे नु पानी ना दियो कुमलान लग पैंदा है, मासूम बच्चा ममता तो वांझा रह गया, प्यार तो वांझा रह गया, सत्कार तो वांझा रह गया, कुमलान लग पया। दूजा खिड़न लग पया, वधन लग पया, प्रफुल्लित होण लग पया। पहला लेंदा हुआ बच्चा इतना कुमला गया, इतना मुरझा गया, मुरझा के टूट गया, मिट गया, सुत्ता सुत्ता अबदी नींद सौ गया, हमेशा दी नींद सौ गया।
اس بچے نو مردہ ویکھ کے نہ ماں دی اکھاں چ ہنجو نہ پتا دے منہ چ ہوکے بس سسکار کرائے, کوئی غم نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی سنتاپ نہیں. کیوں؟ اس نال مو نہیں. مو کیوں نہیں؟ میرا نہیں, میرے نال مو ہوندا ہے. جو میرا نہیں اس نال کادا مو. لیکن داس سسکار کر کے گھر واپس ہی آئے نے, ایک سجن نے آ کے دسیا, مترو جس کا داس سسکار کر کے آئے ہو وہی تھوڑا بچہ سی, جس نو لے کے آئے ہو یہ نہیں ہے تھوڑا. ثبوت مہیا کر دیتے. تہائیاں مار کے رو اٹھی ماں, چیخاں نکل گئیاں پتا دیاں, سارا گھر غماں دا ساگر بن گیا, مرگڑ گھاٹ بن گیا. ہن جس گھر دے خوشیاں دے پھل کھڑے ہوئے سن, ہن دکھاں دے کنڈیاں تو علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ہن جتھے خوشی دی روشنی سی, ہن دکھاں دے ہنیریاں تو علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ماں اپنے کیس پٹ دیے, پتا اپنا سر دیوار نال ماردا ہے. سڈے بگیچے دا پھل مرجھا گیا, اتے میرا سی مرجھا گیا, اتے میرا سی ٹوٹ گیا, اتے میرا سی جاندا رہا. تو دکھ میرے دا ہے, ورنہ لڑکا تک سامنے کھڑا ہے یہ میرا نہیں. اس نال مو بھی ٹوٹ گیا. اس ادارن نال سپشٹ ہو گیا جو میرا ہے اس وچ مو ہے, اور جس وچ مو ہے چھوٹی جی خراش بھی برداشت نہیں ہوئے گی. پر جس وچ مو نہیں, جو میرا نہیں, ریزا ریزا ہو جائے ٹوٹ کے, تاں بھی کوئی دکھ نہیں, تاں بھی کوئی سنتاپ نہیں. سنتاپ, مو, دکھ یہ سارے اتھے کٹھے ہو جاندے نے جتھے میرے بھی مور لگدی ہے. میرا گھر, میری کل, میری عزت, میری مان مریادا, میری دھن سمپدا. تو جو میرا نہیں اس نال مو نہیں. دراصل منک نے میرے بھی مور متھیا تے لائی ہے. میرے دی مور سچ تے نہیں لا سکیا. واقعی جس نو کہہ سکدا ہے یہ پربھو میرا ہے, یہ پرماتما میرا ہے, اور وہ میرا ایسا ہے کہ ساری کائنات بھی اس نو آکھے میرا ہے, میرا ہے. تاں وی وہ بددا نہیں, گھٹدا نہیں. سب دے حصے یکساں آندا ہے, اکو جہا آندا ہے. لیکن مو ایک ایسا پردہ, میرا ایک ایسا اگیان, جس کارن کر کے یہ متھیا نو تے گل نال لاندا ہے, سچ تو کوسوں دور بھجدا ہے. اور اس طرح زندگی مو دے دلدل وچ پھس کے رہ جاندی ہے, مو دے خو دے وچ ڈب کے رہ جاندی ہے. اور اے میرے دا وستار صرف منکھاں تک ہی نہیں کہ میرا بھرا, میری ماں, میرا پتا, میری پتنی, میرے بچے, اگاں چل کے اے مو سمپتا تے ہو جاندا ہے, دھن تے ہو جاندا ہے. موجودہ دور وچ کچھ منکھاں تے وشواس گھٹدا جا رہا ہے. منکھ دی منک نال پکڑ کٹتی جا رہی ہے, منک سیاح ہوں جا رہا ہے, چنچل ہوں جا رہا ہے, بودھک ہوں جا رہا ہے. اور جتنا بودھک ہوں جا رہا ہے
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੰਨਣ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੋਹ ਧਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਲੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਦੇਖੋ, ਦੀਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਦੂਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ, ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਨ, ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਤਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਧਨ ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਵਰਤੀਏ ਧਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਧਨ ਕੋਈ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਪਕੜ ਸ਼ਿਖਰਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਕੜ, ਕੁਲ ਦੀ ਪਕੜ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਕੜ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਪਕੜ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪਕੜ, ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਪਕੜ। ਮੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਦੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੋਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਹੇ ਮੋਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਦੇ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਗੇੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਥੇ ਖੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਉਸ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਗੇਰੀ। ਸਿਆਣੇ ਤੈਰਾਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਗੇਰੀ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸ ਗੇਰੀ ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
और जब सारे निकल जाते ने प्राण तो यह भी घूमन के रिचा निकलता है। परिवार का मोह, धन का मोह, संपदा का मोह, जीवन का मोह, मान मर्यादा का मोह, ऐसी घूमन घेरी है। एक दफा जन्म दे लेके जद मनुख फसदा है तो मरण तो बाद ही उस घूमन घेरी चो निकलता है। और एक गल वखरी है, एक घूमन घेरी चो निकले है फिर जन्म आना है, फिर घूमन घेरी, फिर जन्म आना है, फिर घूमन घेरी। इस तरह अनंत जन्म घूमन घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमन घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमन घेरी च फसदा है और मरदा है। इस तरह अनंत जन्म दुखां दे बतीत होंदे ने। अनंत जन्मां दा संताप मनुख दे कोल जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है। ठीक आखे है, मोह घूमण घेरी है, मोह चक्र वांको नीर जारे वांको सीर है। भर्तरी ने ठीक आख है, मोह ऐसी घूमण घेरी है, इसी ची मनुख फस के रह जाता है, इसी ची मनुख तड़प के रह जाता है। और निकलना जींदे जी उस लई औखा हो जाता है, कठिन हो जाता है। लिहाजा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मोह नू जो पहल दिती है, इथों ही मनुख दिया मूल कमजोरिया का जिक्र करना आरंभ कर देने हैं। ये ठीक ही है, वाकई यही एक ऐसा चक्कर है, यही एक ऐसा घेरा है जिस विच फसदा है मनुख, निकलना कठिन हो जाता है। 80-90 साल का भी मनुख हो जाए, 100 साल का भी मनुख हो जाए, जीवन का मोह, संबंधियां का मोह, धन संपदा का मोह छोड़दा नहीं, मनुख होर जो है फसदा है। जद कदी ऐसी विचार चले तो मैंने एक और बिरध माता चेते आउंदी है, गालबन 90 साल दी, कुबड़ा शरीर, हड्डियां दा ढांचा, बड़ी मुश्किल नाल मेरे कोल चल के आई, हाथ जोड़ के कहन लगी, ज्ञानी जी मेरे लिए अरदास करो। तो मैं सोची पै गया, भया पुराना चोला, चोला पुराना हो गया जिंदगी दा, यही आखती होवेगी परमात्मा संभाल लवे। तो मैं आख्या दसो मां की अरदास करनी है। कहन लगी ओ सामने मेरा पड़पोता खेड रहा है, बस इसका व्याह वेख के मरा, अरदास करो। मैं आख्या नहीं मां, ये अरदास नहीं हो सकती, तू अपना व्याह वेखिया नहीं रजी, पुत्रां दा व्याह वेखिया नहीं रजी, पोतरियां दा व्याह वेखिया नहीं तृप्त होई, तू याद रख पड़पोतरे दा व्याह वेख के भी नहीं रजेंगी। ये मोह दा घेरा होर वड्डा हुंदा जाएगा, होर वड्डा हुंदा जाएगा, और मरण तो पहले ये घेरा टूटदा ही नहीं। धन ने और मनुख जो मौत तो पहले, प्राणा दे निकलन तो पहले मोह दे घेरे विचों निकल जाते हैं, बड़े सूरबीर ने मोह नू जित लिया, मेरे नू जित लिया, और जो मेरे नू जित लैंदा है मोह नू जित लैंदा है, प्रभु उसनू गलवकड़ी चलांदा है और जीवन की बाजी वाकई जित लैंदा है, अपनी जिंदगी वाकई सफल कर लैंदा है।

अत बलना बहुमर्दने। हे अजित, हे संग्राम दे सूर में, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं। गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने। बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर विचारक देवते मानुख चंगे चंगे मनुख स्याणे मनुख गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने। फिर ऐ मो तेरी लपेट देच पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समूह ब्रह्मण ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च ले लिया, तू अपनी पकड़ च ले लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नूं भी सीने नाल लाई फिरदी है। सियाणे कहिंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां दा ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पए, तां वी बंदरी बच्चे नूं छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं। जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा को खरी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आता, नहीं छोड़ती। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखने वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर गण गंधर्व संगीतकार सारे इसकी लपेट दे चुके, सारियां दा मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए। फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति च इन फरमान कर देने,

आहो भगत की थी, दंडौत की थी। राजे ने सम्मान दिता, बिठाया, आने का कारण पूछया, ऋषि राज किस तरह पधारे, साढ़े इस घर नू किस तरह भाग लाए, इस राज सभा नू आके पवित्र कीता, आहो भाग साढ़े, कोई सेवा होवे ते दसो। ऋषि कहिंदा राजन बहुत दुख, बहुत संताप, बहुत माड़ी खबर। राजन दसन लगे हां, मेरी जबान लड़खड़ांदी है, पर मजबूर हां दसन देवी। मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहिंदा है, दसोरा राज ऋषि, संत जन दसो। खड़ा होया ऋषि ते कहिंदा है, राजन तुमको अति विपत, पल पल घड़ी घड़ी

मित्रं तजन्त सतरं दृणन्त अनेक माया विस्तीरणे आवन्त जावन्त थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम भ्यान उद्यान रमण महाबिकट असाधरो

पर छुरी कसा बने। कसाई दे छुरे हेठ आ गया, उन्हें जबा कर दिता, सिर वट दिता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकते

दूसरे दी करेगा। अगर दूसरा वड्डा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा, अहंकारी निंदक हो ही जाएगा। उते प्रसन्न होता है, अपनी उपमा सुन के उपमा होण लग पई है दूजियां दी, तीसरे दी, मित्र दी। तो हुण इस कोल होंदी है निंदा। निंदा दा मतलब की है? गल नूं छुटियाना। और अक्सर मनुख उसे दी ही निंदा करदा है जो किसे गल विच उस नालों अग्गे होवे, गुण विच, कला विच, ज्ञान विच, शील संजम विच, या फिर प्रभु दी बंदगी विच, या संसारी तल ते ले लो सता विच, धन विच, स्वप्न विच, किसे भी पख तों जो अग्गे है, अहंकारी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। अहंकारी सच नूं सच नहीं कहेगा, अहंकारी निंदा करेगा। और अहंकारी बड़ा प्रबल निंदक होता है, छुटियाण की कोशिश करता है, घटाण की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी उन्हां दी तपस्या इतनी इतनी, परमात्मा उन्हां दे सन्मुख होया है, प्रभु सामने होया है, लेकिन हंकारी ब्राह्मणा ने मार मार के मंदिर चो कढ़िया है और मंदिर दे पिछवाड़े बिठा देता है। मारिया कढ़िया है, ये बेचारा मंदिर दे पिछे बैठ गया। पहले थे मूर्ति दे सन्मुख सी, मूर्ति नामदेव दे सन्मुख सी, पर हुण पिछे। पातशाह दी बाणी कहंदी है, अहंकारियां निंदकां पिठ दे नामदेव मुख लाया। अहंकारी निंदक होंदा है और निंदक ते अहंकारी दी तरफ परमात्मा दी हमेशा पिठ होंदी है। जो गुणा दी सिफतों सलाह करता है वो ते परमात्मा दी सिफतों सलाह करता है। गुण किसे मनुख दे च भी प्रगट होए ने तो गुण ते सारे परमात्मा दे ने। गुणा दी तारीफ परमात्मा दी तारीफ है, पर वो ते निंदा करता है, गुणा दी निंदा करता है, क्योंकि अहंकारी है। तो परमात्मा दी पिठ हो जाती उसकी तरफ, और जिस मनुख दी तरफ परमात्मा दी पिठ हो गई है सब दी पिठ हो जाती है। और अहंकारी बहुत दुखां दे दलदल दे जाके फसदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज फरमान करदे ने, आवंत जावंत थकंत जिया, दुख सुख बहु भोगणे, ऐ अहंकार तेरे करके ए जीव जमदे ने, मरदे ने, आउंदे ने, जांदे ने, दुख भोगदे ने, सुख भोगदे ने, थक जांदे ने, टुट जांदे ने। ऐ अहंकार तू ते तोड़ के रख देना कईयां नूं,

सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। काल जाल जम जो हो न साके सच का पंथा थाटेओ। सतगुरु दी बाणी दा फरमान हुण काल दा जाल सानू वेख नहीं सकदा। काल दी फाई साडे ते पै नहीं सकदी। क्यों? असी सच दे मार्ग ते चल पए, असी सच दा पंथ बना लिया, असी सच दे राही बन गए। काल जाल जम जो हो न साखे सच का पंथा थाट्यो। काल समा अकाल समय तो रहत, फाई समय दी है, जाल समय दा है। मनुख वक्त दी गिरफ्त दे च है, मनुख समय दे बंधन दे च है, और समय दे प्रभाव हेठ जी रहे है। वक्त समा काल मनुख तो जो चाहता है कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, और इस सब कुछ मनुख काल दे जाल दे च फस के ही कर रहे है। इंज कह लो बंधन दे च है। समय दा बोध होंदा है दिन करके रात करके। ठहर जाए दिन तो समय नु नापना औखा होवेगा, ठहर जाए रात तां वी समय नु नापना बड़ा औखा होवेगा। दिन ते रात दी ए गर्दिश समय नु नापण दा जरिया बनी, समय नु समझण दी एक प्रेरणा मिली दिन तो रात तो। लेकिन रात अपना एक बंधन लेके आउंदी है, दिन अपनियां बेड़ियां लेके आउंदा है। रात अपनी जाल लेके आउंदी है, दिन अपनी फाई लेके आ जांदा है। शायद इसे वास्ते ते पातशाह ने फरमान कीता, जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई देती। दिन आया है एक जाल दी तरह, रात आई है एक जाल दी तरह, ते दिन ते रात दिया जो सठ घड़ियां ने ते सब फाइया ने। रस रस चोग चुगे नित फासे छूट समूड़े कवन गुने। ऐ मूर्ख किमें छुटेगा, समा तेरे कोल कराई जा रहे है, और इस सब कुछ तो इस तरह करदा पे जैसे फाई देच फड़िया कोई पंछी फड़फड़ांदा, जैसे जाल देच फड़िया फसिया होया कोई पंछी फड़फड़ांदा तड़पदा है। तो इस तरह मनुख दिन नू तड़प रहा है, रात नू तड़प रहा है, जो कुछ कर रहा है बंधन ही बंधन, जो कुछ कर रहा है मजबूरी ही मजबूरी, समा खिंच के इस तो सब कुछ कराई जा रहे है। इस वास्ते भारत दा धार्मिक अध्ययन करता, धर्म दी गहराइयां च जान वाला, उसने परमात्मा नू एक नाम दिता है अकाल। परमात्मा दी दुनिया च समा नहीं है, वक्त नहीं है, उत्थे वक्त है ही नहीं।
संसार काल है, निरंकार अकाल है। जो संसार विच जी रहा है, काल विच जी रहा है, और जो अकाल नाल सुरत जोड़ बैठा है, उदे संसार तो उच्चा उठ गया, काल तो उच्चा उठ गया। विद्वाना ने समय दियां तीन धारावां मनियां ने, समय नूं तीन हिस्सियां विच वंडिया है, भूत, भविष्य, वर्तमान, माजी, हाल, मुस्तकबिल। मनुख जी रहा है समय दियां इन्हां ही तिन्नां धारावां विच। जद मनुख कहिंदा है मेरा मन टिक नहीं रहा, तो किथे चला गया? चला गया भूतकाल विच, चला गया भविष्य विच। मनुखी मन दी आदत है कदी भविष्य दी चिंता विच जीवना, कदी भूतकाल दियां यादां विच जीवना। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दा पिछोकड़ बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दी जीवन यात्रा पिछोकड़ बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। एक धमाका होया सी ब्रह्मंड दे, एक शब्द होया सी, फिर धुंध बनी, पानी बनया, ठोस जीवन बनया, वनस्पति, पशु, पक्षी, सहजे सहजे ए विकास चलदा रहा। अनंत काल तो बाद ए जीवन मिलिया, जिसनु मनुख कहंदे आ, तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। क्योंकि असी कदों तो हां ये नाप ही नहीं सकदे। बल्कि भाई साहब भाई नंद लाल ते ऐसा कहंदे ने, नबूद हेच निशान हांजे जमीनो आसमा, कि शौके यादे तो अवर्द दर वजूद मरा। जमीन ते आसमान दा नामो निशान नहीं सी, नहीं सी। हे गुरु, हे प्रभु, मैं ते उदों दा यात्रा दे छां, पड़ाव ते बड़े आए, मंजिल नसीब नहीं हुई। रस्ते च वक्ती विश्राम करन लई थावां ते आईयां, सदीवी सुख सदीवी विश्राम, ओ ते मंजिल ते लबना सी, मंजिल ते मिली नहीं। तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भविष्य नु बहुत लमकाया जा सकता है, बहुत लमकाया जा सकता है। मनुख दिया इच्छावां, मनुख दिया वासनावां, मनुख दिया कामनावां नु नापिए तोलिए, इना कामनावां विच ते सैकड़े नहीं लखां जिंदगियां जीविया जा सकदियां ने। इतनी कामना, इतनी इच्छा, इतनी प्रबल वासना, इतनिया ख्वाहिशां, ये इस छोटी जी जिंदगी लई बोझ ने, बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। जिंदगी छोटी, ख्वाहिश बहुत लंबी, बहुत लंबी, बहुत लंबी। जीवन सीमित है, कामनावा सीमित नहीं है, वासनावा सीमित नहीं है, असीम ने। जीवन सीमा विच कामना असीम, वासना असीम, इच्छावां असीम। इस वास्ते मनुख नो समा चाहिदा है, अस्थान चाहिदा है। तो भविष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। एक तीसरा समय जिसनु कहंदे ने वर्तमान, वर्तमान कितना होवेगा, वर्तमान नु किस तरह नापिए। असीम है,
भूतकाल, असीम है भविष्य। और मनुख इन्हां दोहां विच जीवदा है। जैसे पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे ने, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघ है उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रहियां ने। जो समा आउण वाला है उहदी चिंता मैनूं जला रही है। भविष्य दी चिंता जला रही है, भूतकाल दियां यादां खा रहियां ने। इंज मनुख कदी भविष्य विच जल रहा हुंदा है, कदी भूतकाल विच खाया जा रहा हुंदा है, मिटदा जा रहा है। वर्तमान एक इन्ना क है, वर्तमान बहुत छोटा है। वर्तमान दी सीमा है। इस वास्ते वर्तमान विच कोई जीवदा नहीं, और वर्तमान दे जो टिक गया उसे नु योगी कहंदे आ, उसे नु असी संत कहंदे आ, उसे नु असी भगत कहंदे आ, उसे नु ही आत्मदर्शी कहंदे आ। पर फिर भी नापिए वर्तमान किन्ना क है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल इस नु नापते ने। वर्तमान किन्ना क है। यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। वर्तमान ते एक दम है, एक दम एक क्षण एक सैकंड एक दम। इन एक दम जो मोह दे च है नकद है, कोल है नकद है। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, मिलने ने कि नहीं। भूतकाल दम खर्च हो गया, दम ते लंघ गए, उते वर्त लै, उते खर्च हो गए। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं। नकद ते है ओही दम जो मुंह दे च है। यकदम बहेश रान बुरदम के कीसतम, एक दम दी मैं विचार ना कीती एक ही है। दम दम करके मेरी जिंदगी रायगा चली गई, व्यर्थ चली गई। यकदम बहेश रान बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। एक दम जो नकद से इन्हों मैं खर्च कीता, गुजरे हुए दमा दी याद दिच, खर्च होए दमा दी याद दिच। एक दम जो मेरे मन दिच सी वर्तमान नकद, इन्हों मैं बतीत कीता आन वाले दमा दी चिंता। तो इस तरह यादां भूतकाल दियां, चिंतावां भविष्य दियां, वर्तमान विच ते कोई जीवदा ही नहीं। वर्तमान है एकदम। शायद इस वास्ते ही दुनिया भर दे महापुरशां ने कहा है, परमात्मा जद मिलदा है एक क्षण विच मिलदा है, एक क्षण वर्तमान, एक सैकंड। एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। टुकदम करारी जो करे हाजर हजूर खुदा है, उस दम दे ची अपने आप नु रोक लवे। वो एक दम जो नकद है उस ते विच ही मनुख बैठ जाए।
حاضر حضور خدا ہے. اسے نوئے مہان صوفی سنت بابا فرید نے انج بیان کیتا ہے، آج ملاوا شیخ فرید تاکم گونجنیاں منو مچندنیاں، جس نال من مچھردا ہے جے تو کدرے روک سکیں، جے کدرے بھوت کال دیاں یاداں نو مٹا سکیں، جے کدرے بھوش دی چنتاواں نو تو جلا سکیں، ہنے ہی خدا تے پرگٹ، پربھو تے پرگٹ. پر ورتمان وچ پہنچن لئی تے بڑی سادھنا، بڑی تپسیا. ورتمان دے چی بھگوان پرگٹ ہوندا ہے، ورتمان دے چی پربھو دی جھلک ملدی ہے. شاید اسے واسطے مہان دارشنک اور گرمت دے مہان گیاتا تتویتا برہم گیانی بھائی صاحب بھائی گرداس جی، انہاں دا فرمان ورتمان وچ ورتدا ہوونہار سوئی پروانا. گرمک تے ورتمان دچ جیوندا ہے ایک چھن دچ، اور اس وچ جو کچھ ہو جائے ہو گیا ہے قبول پروان، اور جو ہو گیا قبول ہے پروان ہے. سمجھ لو یہ جو ہو گیا اس تو اچھا اٹھ گیا، یہ سنسار تو اچھا اٹھ گیا، کیونکہ سنسار وچ دکھ ہے سکھ ہے، ہاسے نے رونے نے، جنم ہے مرن ہے، نفع ہے نقصان ہے. سنسار وچ تے عزت ہے بےزتی ہے تندرستی ہے بیماریاں نے، سوپن ہے کروپتا ہے. اچھا اٹھ گیا ایک دم دچ، جد ٹکیا تو ایک پرگٹ ہویا دو مٹ گیا، دو مٹ گئے سنسار مٹ گیا، ایک پرگٹ ہو گیا نرنگار پرگٹ ہو گیا. تو ایک دم دچ ہی پرگٹ ہو گئے گا. بہتے دم جو خرچ ہو گئے نے انہاں دی یاد دچ پرماتما کتھے، انہاں دماں دی یاد دچ تے کچھ دکھ ہون گے کچھ سکھ ہون گے. بیٹھا ہوندا ہے منک یاداں وچ، کدی دکھ دیاں یاداں کدی سکھ دیاں یاداں، کدی ملاپ دیاں یاداں کدی وچھوڑے دیاں یاداں، کدی سنتاپ دیاں یاداں کدی ملاپ دیاں یاداں. اس وی جی رہا ہوندا ہے، یا پھر بھوش دی چنتاواں دے جی رہا ہوندا ہے، یہ ملنا بھی ہے کہ نہیں، کامیاب بھی ہوواں گا کہ نہیں، نفع ہوئے گا کہ نہیں. بھوش دی چنتا اس طرح دبدا دچ ڈبوئی رکھتی ہے. بھوش دی چنتا دچ منک دفاڑ ہویا بنیا رہندا ہے. ایک دم دچ تے بھوش مٹ جاندا ہے، ایک دم دچ تے بھوت کال مٹ جاندا ہے، ایک دم دچ تے ایک پرگٹ ہو جاندا ہے. وہ ایک آنند سروپ، وہ ایک آنند مئی. اس واسطے گروانی نے بھوش نو جال کہہ دیتا ہے، بھوت کال نو جال کہہ دیتا ہے. اور بھوت کال تے بھوش، ایک گزرے ہوئے دن، آن والے دن، اور دن دن کر کے دن بھوت کال بندے جا رہے نے، دن بھوش دیاں چنتاواں دا روپ دھارن کردے جا رہے نے. تو سمے نو ناپن دا ڈھنگ دن تے رات اتے جال بن کے منک نو پھسا رہے نے. جالی رہن جال دن ہوا، جیتی گھڑی پھائی تیتی، رس رس چوب چگے نت پھاسے، چھوٹس موڑے کون گنے. دستے سہی کیوں چھٹے گا اس جال تو،
तो सतगुर की बाणी डंग भी दसती है, काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाट्यो। सच ते वर्तमान है, सच ते एक क्षण दे छे, सच ते एक सैकंड दे छे, और ओही एक सैकंड ओही एक क्षण ओही एक दम सच है। लंघ गए दम झूठ ने, आने वाले दम झूठ ने। एक छोटी जी गाथा है, धन गुरु नानक देव जी महाराज अगम्मी मौज दे च बैठे ते मरदाने नू कहिंदन, मरदाने आ तेनू अपने जीवन का किन्ना क भरोसा है, कितना तक तू जीवन की लालसा रखदा है, उम्मीद रखदा है, भरोसा रखदा है। सतगुरु की संगत काल मिटिया ते नहीं मरदाने की दुनिया च, अजे काल छोटा जरूर हो गया है। समा मिटिया ते नहीं, समा छोटा हो गया है। कहिंदा है पातशाह, सौ कदम तक चला अगे दा मैनू कोई भरोसा नहीं, अगला कदम मैं उठ सकांगा कि नहीं। तो कम से कम 200-300 दमां दा थे मर्दाने नू भरोसा है, इतने दम ते मैं ले सकदा। बाले नू पुछदे ने, बालिया तू दस। तो बाला कहिंदा है पातशाह, मर्दाने नू 100 कदमां दा भरोसा होवेगा, मैं तो एको ही कदम दे भरोसे जी रहा। एक कदम जो पुटे पता नहीं दूसरा कदम उठ सकांगे कि नहीं। तो 3-4 दमां दा भरोसा, समा बहुत सीमित हो गया, समा बहुत छोटा हो गया, काल बहुत छोटा हो गया। 3-4 दम दोवें हाथ जोड़ के पुछदे ने धन गुरु नानक देव जी नो, पातशाह थानू किन्ना क भरोसा है, थोड़े भरोसे नाल साडा बोध वधे, साडा ज्ञान वधे, थानू किन्ना क भरोसा है दसो। साहिब कहिंदे ने हम आदमी हां इकदम ही मोहलत मौत न जाना, एकदम जो मोह दे चे बस इसे ते यकीन है, इन्ना एक भरोसा है एकदम दा, बाकी दा कोई भरोसा नहीं, बाकी दी कोई उम्मीद नहीं। और जिथे सुरत एकदम दिस डिग गई उथे एक प्रगट हो गया, जिथे मन एकदम दिस टिक गया, मन मिट गया, विचार खो गए, उथे एक नु प्रगट होने लई स्थान मिल गया, जगह मिल गई। जद भविष्य दी चिंता बहुत लंबी होवे, भूतकाल दियां यादां असीम आवन, सच नु प्रगट होने लई थां नहीं मिलदी। सच ते वर्तमान विच प्रगट होंदा है, और जैसे सच प्रगट होंदा है सुरत एकदम विच टिकदी है, काल खो जांदा है अकाल प्रगट हो जांदा है, काल मिट जांदा है अकाल प्रगट हो जांदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते कहंदे ने सब समय दा तमाशा, सब काल दा तमाशा, क्या छोटे क्या वड्डे, क्या आम साधारण क्या देवी देवते, सब काल विच जी रहे ने। काल पाए ब्रह्मा बप दरा, काल पाए शूजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। सब समय दा तमाशा, सब इस काल विच जी रहे ने। ब्रह्मे जैसा महान दार्शनिक
विष्णु जैसा महान सतोगुणी, शिव जी जैसा महान तपेश्वर जपेश्वर, पर काल विच जी रहे, समय विच जी रहे। अजे समा मिटिया नहीं, अजे काल मिटिया नहीं, अजे काल मौजूद है, काल विच जीविया जा रहे। इस वास्ते गुरबाणी ने परमात्मा दा नाम रखिया अकाल। वो मूर्ति मान है, पर ऐसी मूर्ति जो वर्तमान विच प्रगट होंदी है, अकाल मूरत। भविष्य दी चिंतावां विच नहीं, माजी दियां यादां विच नहीं। इसनूं मैं पंजाबी रूप विच इस तरह बयान कीता है, माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां, भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां, जीवन में सिखिया अज दे कोलों अज नूं मिलां ते अजे ही मिलां। इसनूं मैं उर्दू रूप भी दिता है, कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं, जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं। हाल वर्तमान, और जो हाल विच नहीं जी रहा उन्हों कहने ने ते बेहाल है। इते वर्तमान विच नहीं, इते एकदम विच नहीं, इते बेहाल है, इते भविष्य दी चिंतावां दे जी रहा, मुस्तकबिल दी फिक्र दे जी रहा, इते भूतकाल दियां यादां दे जी रहा, इते माजी दियां यादां दे जी रहा। ये वर्तमान विच नहीं, ये हाल विच नहीं, और जो हाल विच नहीं परेशान च कहंदे ने बेहाल बेहाल बेहाल। इस वास्ते आम पद्धर ते भारत विच ईरान अफगानिस्तान विच पुछिया जांदा है, तेरा की हाल है, तेरा की हाल है, भाव वर्तमान विच है कि नहीं, एक प्रभु विच है कि नहीं, कि दो विच जी रहे हैं। सपना है जिन्ने देर तक चल रहे है, पर नहीं है अचेत अवस्था दे सपन, जागृत अवस्था दे मिट गया। है नहीं है, नहीं है, है स्वप्न है। स्वप्न देच मनुख कतल करे, शरीर ते मन ते ओही प्रभाव पैंदा है जो जागृत अवस्था देच मनुख करे। स्वप्न देच दुराचार करे, शरीर दी ओही हालत बनदी है, मन दी ओही हालत बनदी है जो जागृत देच। स्वप्न देच चोट लग जाए, जरब लग जाए, शरीर दी हालत मन दी हालत ओही बनदी है जो जागृत अवस्था देच। पर स्वप्न देच मिलाप होया है, कोई मिले है, उतनी ही खुशी आती है। कोई मन चाहा मित्र मिले है, कोई मन चाही वस्तु मिली है, स्वप्न देच मिली है, मन प्रभावित होया है, तन प्रभावित होया है। स्वप्न इस बारे असी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, है, पर जितनी देर विच कहने है नहीं हो जाता है, और जद कहंदे नहीं है, है हो जाता है। जागृत अवस्था विच जो संसार है वो निंद्रा अवस्था विच नहीं हो जाता है, स्वप्न अवस्था विच नहीं हो जाता है, और स्वप्न अवस्था विच जो संसार है वो जागृत अवस्था विच नहीं हो जाता है। जागृत अवस्था का जो साडा संसार है वह स्वप्न अवस्था विच विलीन हो जाता है, और जो स्वप्न अवस्था विच संसार है वह जागृत विच खत्म हो जाता है। तो हुण किस नूं सत कहिए ते किस नूं मित कहिए, किस नूं कहिए है ते किस नूं कहिए नहीं है।
ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਹੈ ਸਵਪਨ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਸਵਪਨ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹੈ ਜਾਗਰਤ ਔਰ ਜਾਗਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਜਾਗਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਤ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਵੀ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਸਵਪਨ ਵੀ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਸਵਪਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਪਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਸਵਪਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਵਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਫੀਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਛੜਿਆ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਪ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਤ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਫ਼ਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਭਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸੁਪਨੇ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਸਮਾਦ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਸ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਖੋਇਆ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ? ਸੁਪਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸਵਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ ਮਤ ਸ਼ੋ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ, ਐ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਨੀਂਦ ਆ ਤੂੰ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਝਲਕ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਮਿਲਾਪ ਭਰਿਆ ਸੁਪਨ, ਸੁਖ ਭਰਾ ਸੁਪਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਭਰਾ ਸਵਪਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉੱਠਣ ਉਪਾਸ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ ਹੌਕੇ ਨੇ, ਤੋ ਹੌਕੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੌਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੇ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਤੁਛ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ
चौ जुगे समाने रैण भई तब अंत न जाने। दिन दे चार पैर चार युगां वर्गे हो गए, नहीं लंघदे नहीं लंघदे। एक एक युग हजारां साल वर्गा लखां साल वर्गा नहीं लंघदे। इन्ना लंबा हो गया कल्पना नहीं, ये सच है। चार पहर चौ जुगे समाने रैण भई तब अंत न जाने। आई ये रात पता नहीं कितने युगां वर्गी है, कह नहीं सकते। दुख दे समा बहुत लंबा हो जाता है, नरक दुख है। ईसाई जगत में इसकी व्याख्या करनी नहीं आई, उन्होंने कहा नरक हमेशा लई है, सदैव ही है। शायद इस वास्ते नीतिशे जैसे विचारक ने कह देता कि मैं धार्मिक क्यों नहीं हाँ, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हाँ। कहिंदे जो मैं गुनाह कीते ने, जो मैं पाप कीते ने, और जिन्हां गुनाहां बारे मैं सोचिया सी, अगर मैं किसे अदालत नूं दस दियां तो सख्त मजिस्ट्रेट भी मैनूं 4 साल तो वध जेल दी सजा नहीं दे सकदा। लेकिन मैं खुदा नूं मनिया नहीं, इसे एक गुनाह करके वो मैनूं हमेशा लई नरक, हमेशा लई। और ऐसा नरक जिथे जंबूरा नाल मास नोचिया जांदा होवे, जिथे दलदल दे सुटिया जा रहा है, जिथे उबलदे तेल दे तलिया जा रहा है, जिथे जिंदा मनुख दी जबान कटी जा रही है, बंद बंद कटे जा रहे ने, नरक दा ए नक्शा। तो ए विचारक कहिंदा है फिर उस खुदा नूं रहीम कहण दी, रहमान कहण दी, प्रसाद कहण दी, दयालु कहण दी, करुणाकर कहण दी लोड़ की है। बहुत सख्त है, वो बहुत जालम। दरअसल व्याख्या करनी ना आई, नरक दुख है, स्वर्ग सुख है। सुख दे समा छोटा हो जाता है, दुख दे समा लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। एक घड़ी दिनस मुख बहुत दिहाड़े, मन न रहे कैसे मिलो प्यारे। एक पल दा विछोड़ा और उसका दुख, ये एक पल ते कई दिनों वर्गा है, नहीं लंघदा नहीं लंघदा। दुख दे बहुत समा लंबा हो जाता है, काल बहुत लंबा हो जाता है। सुख दे काल छोटा हो जाता है, परम आनंद काल खत्म हो जाता है, अकाल प्रगट हो जाता है। एक सैकंड दे एक क्षण देच एक दम देच भूत खो गया, भविष्य खो गया, अकाल प्रगट हो गया, काल ते खत्म हो गया। लेकिन बहु गिनती मनुखी दुनिया दी काल देच जी रही है। मनुख दे कोल सिमरति है, इस सिमरति कदी अगे जांदी है कदी पिछे जांदी है। जदे भूतकाल दी तरफ जांदी है तो भूतकाल दा चिंतन बन जांदी है, जद भविष्य दी तरफ जांदी है तो चिंता बन जांदी है। तो चिंतन चलदा है भूतकाल दा, चिंता चलदी है भविष्य दी। ये किस तरह मिटे है? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, मैं जिथे तक देखदा मनुख चिंता विच जी रहा है, भविष्य बहुत लंबा हर एक ने बनाया है, बहुत लंबा बहुत लंबा। चिंतत ही दी से सब को है, सारी चिंता विच दिखाई दे रहे, सारिया ने बड़ा लंबा भविष्य बना रखे और चिंता भविष्य दी। यही कारण है कि कदम कदम ते बाजारां च बैठे ज्योतिषी मिलन गए, उन्हां नूं भी पता है हर मनुख जी रहा है भविष्य दी चिंता दे च। जरूर पूछेगा भविष्य कैसा है, भविष्य कैसा है,
भविष्य कैसा है, भूतकाल कैसा है, कुछ इसनु चेते है, गुजरिया या कल कैसे सी, गुजरिया या साल कैसे सी, गुजरे 50 साल कैसे सन, चेते ने, आन वाला कल किस तरह होवेगा कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये तो ठीक है कि 50-60 साल तो कोई पिछे जाए, 5 साल दी जद जिंदगी होवे उस तो पिछे मनुख दियां यादा नहीं जांदियां, भुल गया है। हां किसी किसी दी सिमरति ये शक्ति ज्यादा होंदी है, वो इस जन्म दी दीवार नु तोड़ के अगले जन्मांच भी पहुंच जाती है, पिछोकड़ बहुत कुछ दिसदा है, बहुत कुछ दिसदा है, और भविष्य भी वो देख लेंदे ने और सही देख लेने। मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना, भावे अज हो जाए भावे कल होवे, परमात्मा होए बिना ये चिंता मिटनी नहीं, ये भविष्य मिटना नहीं। पर यादा मासी दिया, भूतकाल दिया, यही बोझ मनुख ढो रहे है, इसी बोझ दे तले मनुख दबे होया है, यही भार चुकी फिरता है। कहिंदे ने भाई साहब भाई नंद लाल अद्धी रात नु बैठे ने, मुंह लंबे लंबे होके निकल रहे ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी चहल कदमी आप दे कन्ना देख

दस क्यों काला दिखाई दे रहे हैं, ये क्यों काला है? तो नंदलाल सोचते च पै गए, हाथ जोड़ के कहने, पादशाह मैं शायर हाँ कवि हाँ, आपदा अदना सेवक हाँ सिख हाँ, मैं विज्ञानक नहीं, मैं की जाना आसमान काला क्यों है। पर सतगुरु कहने, तू तस्लीम कीता है शायर है कवि है, तो कवि दी अपनी कल्पना दी प्रवाज भी होंदी है, शायर दे अपनी तखयल दी प्रवाज भी होंदी है, उडारी होंदी है। चल तू अपने तखयल दे आधार ते, कल्पना दे आधार ते दस, आसमान दा रंग काला क्यों है? रंगश कबूद कर दिले अज पुर सुरार साख्त, अज बस के दूदे आहे मन अज आसमान गुजस्त। हे मेरे पादशाह, मेरे तड़पे हिरदे चो जड़े होके निकले ने, ओ जद आसमान तक पहुंचे ने, उन्होंने ही साड़ के काला कीता है। पादशाह ने गलवकड़ी च लै लिया, इतने काल दे भार थले तू जी रहे हैं। अकाल पुरख रहमत करन बख्शिश करन, काल खत्म होवे अकाल प्रगट होवे। अकाल महा आनंद है, अकाल वर्तमान है, काल भूतकाल है, काल भविष्य है, और काल भविष्य की चिंता है। काल भूतकाल दियां यादां ने, पर अकाल ना भूतकाल दियां यादां ना भविष्य दियां चिंतावां, परम आनंद प्रगट हो गया, अकाल प्रगट हो गया। भगत कबीर कहंदे ने, दिन सुरैन बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा, कहत कबीर नर तिसे ध्यावो बावरिया संसारा। ए पागल संसारियो, वाकई जो भूतकाल दियां यादां च बैठा है उन्हों किस तरह सियाणा आख्या जा सकता है, जो भविष्य दियां चिंतावां दे च डुबिया होया है उसनों किवें सियाणा आख्या जा सकता है। सियाणा ते ओ जो वर्तमान दे जी रहा है, अकाल दे जी रहा है, काल दे च नहीं। अकाल दे जीण वाला काल दियां सारियां फाइयां नूं तोड़ के रख देंदा है, काल दे जाल नूं तोड़ के रख देंदा है। तदी ते सतगुरां दी बाणी फरमान कर दी है, काल जाल जम जो हो न साके, सच का पंथा ठाठे हो। इसे नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने, अकाल हैं अजाल हैं, हे प्रभु तू अकाल है, तेरे उते काल दा जाल नहीं है। और मिट जांदा है समाधि दे समा, खो जांदा है काल, समस्यावां ते भविष्य दियां ने, समस्यावां ते माजी दियां सन, तो यादां समस्या समस्यावां दी यादां कुछ भूतकाल नाल संबंधित है, कुछ भविष्य नाल संबंधित ने। मिट गईयां सारियां समस्यावां क्योंकि वर्तमान एक क्षण समाधि। या मनुख समस्या च जीवदा है या समाधि, समाधि अकाल है, समस्या भूत है, समस्या भविष्य है, समाधि अकाल है। अकाल दा चिंतन समाधि लीन कर देंदा है, अकाल दी याद काल नूं मिटा के रख देंदी है। अकाल दा चिंतन सच दे मार्ग ते चलना है और सच तक पहुंचना है। काल जाल जम जो हो न साके, सच का पंथा ठाठे हो।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मुहूर्त अजोनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जो दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे गुरु रूप सत्संग जियो फतेह कबूल करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी हम कहियत कल युग के काम तो की हैं मैं की हां यदि वजाहत भगत सिरमौर श्री रविदास जी बयान कर रहे हैं। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी हम कहियत कल युग के कामी। इस युग देच मनुख दा जेड़ा अवगुण प्रधान है उसका जिक्र पै करते हर समय हर युग देच एक अवगुण प्रधान आउंदा है। ये मैं अर्ज कर दें बाकी अवगुण भी होंदे न वो जेर साया आउंदे ने एक अवगुण प्रधान आउंदा हर व्यक्ति देच बहु गिनती देच एक ही तरह का औगण मनुखता दे अंदर प्रधान होवे 60-70 फीसदी दे अंदर उस नाल फिर तुलना की जाती है इस युग का औगण केड़ा है।

0: कामना ए हुण सुन लो काहूं फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संगराज। इत्थे ते सारियां कामनावां नूं परे सुट गया। किथे सुट के आईए? कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे को। जिथे जोड़े लाके आया ना कामनावां उत्थे लाके थे आ। फिर प्रभु तेरी झोली आत्मक रस नाल भर देगा, आनंद नाल भर देगा। गुरु तेरी झोली दे रब्बी गुण पा देगा। इस तरह दे जीवन दा ढंग सानू आ जाए तो मेहरज करा परिवार विच बैठे भी असी निरंकार विच बैठे होवांगे, दृष्टि बदल जाएगी। मात पिता सुत बंधव भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। हे पार ब्रह्म, तू मेरा मददगार बनया। किधरे पुत्र बन गए, किधरे पिता बन गए, किधरे दादा बन गए, किधरे भरा बन के, किधरे भैन बन के। तू मेरा सहयोगी बनया। किधरे पति बन गए, किधरे पत्नी बन गए। परिवार निरंकार का रूप हो जाएगा, दृष्टि बदल गए। एक ढंग है कि परिवार भी हरि मंदिर बन जाता है, निरंकार का रूप है। एक ढंग है कि गुरुद्वारा भी संसार बन जाता है, मंदिर भी संसार बन जाता है। जितनी मैनू थोड़ी बहुत समझ सी ते जितना मैं खोल सकदा सी, जिहड़े जिहड़े लफ़ज़ सतगुरु ने मैनू दिते मैं थोड़े सामने रखे ने। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज, थोड़ी भावना उजागर करे कीर्तन दे राही, कथा दे राही, इस पाठ दे राही। क्योंकि भावना उजागर हो जाती है तो जीवन च भगवान प्रगट हो जाता है, परमात्मा प्रगट हो जाता है। इस तरह की अवस्था साड़ी बने। सारियां दा बार बार धन्यवाद। बोल चुक दी शमा। वाहिगुरु,
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
2: सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा अगन अतोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु रूप सत संग जीओ, फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बीज धरती दे जद बो दईए तो एक दिन विच फलीभूत नहीं आउंदा, समा लगदा है, वक्त लगदा है। लंबी चौड़ी यात्रा तो लंघ के बीज फुल बनदा है और फिर फल बनदा है। जैसे फुल फल बनदा है तो फुल अपना रूप गवा देंदा है, फुल दा रूप नहीं रहिंदा। पातशाह दी बाणी दा फरमान, फल कारण फूली बनराए, फल पाका तब फूल बिलाए। बीज फुल बन गया है, अगर ये फुल फल होना चाहता है तो फुल नू अपनी होंद मिटानी पड़ेगी, फुल फुल नहीं रहेगा। और अगर बीज फल होना चाहता है तो बीज नू भी अपना रूप गवाना पड़ेगा, अपनी होंद मिटानी पड़ेगी। बीज बन गया है फुल, हुण अगर यही फुल फल होना चाहता है तो फुल झड़ेगा, फुल मिटेगा। फल कारण फूली बनराए, फल पाका तब फूल बिलाए। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तब कर्मे नास। सारे दा सारा कर्म कांड रह जांदा है जद मनुख ज्ञान दी शिखरता नू छू जांदी है। कर्म कांडी दा ते हो सकदा है ज्ञान खंडी दा आपस दे तालमेल ना बैठे, संबंध ना जुड़े। धार्मिक दुनिया दे जिहड़ा ये झगड़ा हुंदा है कई दफा बीज दा फुल नाल, फुल दा फल नाल। बीज अपनी होंद नू कायम रखना चाहता है, फुल अपनी होंद नू कायम रखना चाहता है। और इस तरीके नाल की हुंदा है, उसका संघर्ष हो जाता है जो फल हो गया है, अगे लंघ गया है। اور تال

किसी अंदर जोश भरना, एक गल कुछ और है पर अपने ही बच्चियां नूं शहीद करा के किसी अंदर मरण दा चाव पैदा करना, एक गल कुछ और है। अल्लाह यार खां, किसी नूं पानी विच तैरना सिखाना होवे पहले आप तैरना पैंदा है, किसी नूं मरण दी जाच सिखानी होवे पहले आप मरना पैंदा है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है गल। ये अल्लाह यार खां कहिंदा है। खैर, जद गंगा सिंह ने कहा इस मांग करके युद्ध होया है, जंग हुई है, बड़ा भारी खून खराबा होया है, तो ये मां भी भुली हुई रैबर हुई, पर कृष्ण भी भुले रैबर होया है। अर्जुन ते जा रहा सी, वो ते कहिंदा सी मैं हिमालय चले जाना है, मैं उत्तराखंड जाना है, तप करना है, जप करना है, मैं नहीं लड़ना, ये राजपाठ मैनू नहीं चाहिए, मेरे मन विच बैराग पैदा हो गया है, लड़े बिना बैराग पैदा हो गया है, क्योंकि मैं सोचता पाया अगर जित भी हो गई पितामह नूं मारांगा, गुरु नूं मारांगा, पितामह नूं मारांगा, ते फिर राजपाठ मिलेगा, इस सारी जिंदगी मेरे मन ते बोझ पिया रहेगा कि मैं अपने भरा नूं मार के राज लिया, मैं अपने गुरु नूं मारिया, मैं अपने पितामह नूं मारिया, मैं नहीं लड़ना। लेकिन कृष्ण ने लड़ाया, आखिया नहीं, भावे तेरा भरा है पर दुष्ट है, देश धर्म नु चमड़े आया मवादी फोड़ है, गलत है, भावे तेरा गुरु गुरु है पर गलत पक्ष ले रहे है। वाकई इस गुरु ने गलत पक्ष लिया, भरी सभा विच द्रौपदी नग्न कीती जा रही है, गुरु बोलदा नहीं, भरी सभा दे द्रौपदी नग्न कीती जा रही है, भीष्म पितामा बोलदा नहीं, ये वकत दे गुरुआ दा हाल सी। जब गुरु ही आवाज नहीं उठाते पे जुलम के खिलाफ, तो बाकिया ने की खाक उठानी सी, किस तरह उठानी सी। इस वास्ते कृष्ण ने कहा भावे गुरु है पर इस सच के पक्ष विच नहीं खड़ा, भावे तेरा पितामा है पर यह भी झूठ की मदद से खड़ा है, तू चीर दे इना नू, पाप सारा मेरे जिम्मे है, इसका मैं संकल्प करदा, तू लड़। यह हल्ला शेरी कृष्ण ने दिती, सुटे शस्त्र चुक ले। तो प्रिंसिपल गंगा सिंह ने कहा इस महाभारत दे युद्ध बारे, इस खून खराबे बारे, इस गीता बारे जिसनों तुसी मां कहिंदे हो, इस बारे आप दी की राय है। पहले तो महात्मा गांधी ने कहा ये युद्ध नहीं हुआ, ये मानसिक युद्ध की बात है, ये लड़ाई अंदर हुई, ये बाहर नहीं हुई। तो गंगा सिंह जैसा रोशन दिमाग बंदा कहन लगा जे ये लड़ाई कुरुक्षेत्र दिच नहीं हुई, सिर्फ अंदर ही हुई है, तो फिर कृष्ण जी भी मथुरा दिच नहीं हुई, कोई अंदर ही हुए होंगे, तो भी कोई नहीं हुआ। कहिंदे ने महात्मा गांधी ने अपने बोल वापस ले, ए मैं समझदा उसकी बुजुर्गी सी कि उसने कबूल कर लिया, बोलो ये मैं तो जो उन्हों का हिंदी का गुजराती का पेपर निकलता से उसके उन्होंने तस्लीम किया भी मेरे को शब्द गलत निकले ने, मैं सिख जगत तो माफी मंगना। उसने अपने शब्द वापस ले सन, अपने बोल वापस ले सन, वरना भारत के तमाम प्राचीन अवतारी पुरुष अपने हाथ शस्त्र रखते हैं, राम के कोल धनुषबाण है। यह गल वखरी है, महात्मा गांधी का धार्मिक तालमेल से बैठा कृष्ण नाल, लेकिन राजनीतिक तालमेल कृष्ण नाल नहीं बैठे, वह राम राज चाहते सन, कहने राज चाहिए राम का, कमाल की गल धर्म चाहिए कृष्ण का, राज चाहिए राम का, कृष्ण का राज नहीं चाहिए। राम राज की वह गल करते रहे, रामायण एक दिन भी नहीं पढ़ते सन, पढ़ते गीता सन, कारण श्री कृष्ण उन्हां दी सोच नहीं, किसी वक्त खुलासा मैं थोड़े सामने रखांगा। वह कहते सन एक पासे मनुख है एक पासे कानून है, ते जे मेरे सामने मसला खड़ा हो जाए, कानून नू बचाना है कि मनुख नू बचाना है, तो मैं मनुख नू बचावांगा, कानून रद्द होंदा ते होण दे, मनुख कानून लई नहीं है, कानून मनुख लई है, मनुख मर्यादा लई नहीं है, मर्यादा मनुख लई है। राम दा फैसला यह सी जे मनुख सामने ते मर्यादा सामने, तो दोहां दे च इक नूं बचाना होगा, मनुख नूं कुर्बान कर देंगे मर्यादा बचावांगे, इस वास्ते उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम आख्या गया, मर्यादा बचावांगे, बंदे नूं फांसी ते चाड़ना है तो चाड़ देंगे। ब्राह्मणां दी बनाई हुई मर्यादा सी कि शूदर

سنمان یو گرو روپ سات سنگ جیو فتح پروان کرنی واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح. لڑی وار آپ وچار سرون کر رہے ہو شام دے دیوان وچ. اتنی لمبی تے لڑی یہ نہیں کرنی سی پر ہو گئی. جپ جاپ اے بنیادی مول بانیاں. اج بھائی ہرچرن سنگھ جی وچار کر رہے سن کہ بہت سارے ایسے سجن نے جنہاں نوں جاپ صاحب کنٹھ نہیں پڑھ نہیں سکدے. انہاں دے چ ایک وشیشتا ہے اے واجے جوڑی نال جاپ صاحب پڑھا کے قریباً قریباً کئیاں نوں کنٹھ کرا دیندے نے, شدھ کرا دیندے. شاید اے 8 یا 9 تاریخ تو اگلے ویک تھوڑے سامنے اس طرح رات نوں کریا کرن گے. اے داس دے بہت پرانے ساتھی نے غالباً سن 58-59 تو بہت پرانے ساتھیاں دے چوں گرمکھ سجن نے. خیر مختصر میں عرض کراں, جپ مول ہے, جپتے ہی ساری گرمت کھڑی ہے, جپتے ہی ساری سکھی کھڑی ہے. جپ کڑ دے ہوتے سکھ سکھ نہیں ہے. گرو دی مت ساری جپ دی ویاکھیا ہے, جپ دی پریرنا ہے. جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما, یہی جپ جاپ بن جاندا ہے. نرمانتا دی مورتی سجدے انت روپاں نو سجدا. یہ جپ جاپ جد بنتا ہے تو یہی جاپ بیراگ بن جاتا ہے. جپ جو رسنا دوارا ہے, جاپ جو پرانا دوارا ہے, بیراگ یہ پرش ہوں سنسار تو اکھڑ گیا ہے. رہندا جگت وچ پیا ہے پر جگت تو اکھڑ گیا ہے. رہندا پروار وچ پیا ہے پر پروار تو اکھڑ گیا ہے. اس طرح جیسے ایک دلیل داس نے دیتی سی, پکا ناریل ہال دے اندر ہی اجے گری لیکن سمبندھ توڑ بیٹھی ہے تے ہال دے اندر, پر ہن ہال نال کوئی رشتہ نہیں رہا. جد کچی سی تے ہال نال چمڑی ہوئی سی, ہن نہیں. بیراگ جیسے پکدا ہے منک اس سنسار دے کھول نو, شریر دے کھول نو, پروار دے کھول نو چھوڑ دا ہے. رہندا پروار دے چ ہے لیکن نرلے, رہندا سنسار دے چ ہے نرلے, رہندی آتما اس شریر دے چ ہے نرلے. اس طرح دا پرش قریباً قریباً ہر وقت اداس ہوے گا. جگت دیچ سمجھ آ جائے گی اس نو ایسا کچھ بھی نہیں جس دیچ میں جی سکاں, بیراگ. اور اسی اداس برتی دیتے سنیاس کھڑا ہے. جیسے کل داس نے عرض کی تھی, رے من ایسو کر سنیاسا, من سے سدن سبہ کر سمجھو من ہی ماہے اداسا. جو من تو اداس ہو جائے وہ سنیاسی ہو جاتا ہے. اداس منک ہے تین چار کارنا کر کے ہو سکتا ہے. گیان کر کے, کتھا کیرتن سنیا تے کتھا کیرتن چوٹ کر گئی, اداس ہو گئے, سمجھ آ گئی. دوسرا تارکک ہے, کتھا کیرتن نے تے چوٹ نہیں کیتی پر سوچ دا بہت زیادہ ہے, وچار دا بہت زیادہ ہے. اور اس دے اپنے وچار اتنے پربل, اتنی سوچنی پربل ہو گئی کہ سنسار تچھ محسوس ہوندا ہے. بڑے بڑے عظیم چنتک دارشنک فلاسفر اداس ہی رہندے نے. اور میرج کرنا جتنے او بے چین تے اداس رہندے نے اتنا اور کوئی بھی نہیں. جتنے او زیادہ سوچدے نے اتنا سنسار آسار پرتیت ہوندا ہے. اتنی گل تے سپشٹ ہے کہ سنیاس تے اداس برتی دا چولی دامن دا ساتھ ہے. جو اس جیون تو اداس نہیں او پرم جیون دی تلاش نہیں کرے گا.
जो पदार्थां तो उदास नहीं वो परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। या इंज कह लो परमात्मा की तलाश कौन कर रहा है जो पदार्थ तो उदास हो गया है। परम जीवन की खोज कौन कर रहा है जो इस जीवन तो उदास हो गया है। निरंकार की तलाश कौन कर रहा है जो संसार तो उदास हो गया है। संसार तो उदासी कुछ कारना करके होंगी है। प्रथम ज्ञान करके, दूसरी अपनी निजी सोचनी करके, तीसरा कोई चोट लग जाए बड़ी गहरी संसार तो उदास हो जाता है। चौथा है संसार दिस जो कुछ प्राप्त करना चाहता है नहीं होया, उदास हो जाता है। लेकिन फिर भी इस तरह के उदास बंदे की जिसकी संसार दे चजे पूर्ति नहीं हुई, एक निक्की जी आसा बनी रहती है चलो अज पूर्ति नहीं हुई कल हो जाएगी। ये पूर्ण तौर पर निराश नहीं होता। पर जो निजी सोचनी करके है वो तो पूरा उदास हो जाता है। मैं पढ़ रहा सी एक दिन दीवाने गालिब, हालांकि संसारी पद्धर का शायर है इश्क मिजाजी, अजे हकीकी दे नेड़े नहीं गया, लेकिन कहिंदा है इस दुनिया च मैं जी के की करा, बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे। कहिंदा सारा संसार बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नादान लोग, इन्हां नाल मैं किस तरह जीवां, सवेरे खा लेना शामी खा लेना कल फिर खाना, ये इसे तरीके नाल जिंदगी बतीत करी जाना। गालिब कहिंदे ने ते मैनूं इंज लगदी है जिवें मशीनी जिंदगी है, मैं इस नाल जीवन नूं राजी नहीं। इते बचकानी खेल है, बाजी चाहे इतफाल, इतफाल कहिंदे ने बच्चे, तिफल कहिंदे ने बच्चे नूं, इतफाल बच्चियां दी जमा। बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आ गए, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आ गए। कहिंदा दिन रात ए बच्चियां दा खेल हो रहा है, एक खेल है औरंग सुलेमान मेरे नजदीक। औरंग कहिंदे ने तख्त जिदे उते बादशाह बैठता है, तख्त सुलेमानी बच्चियां दा खेल प्रतीत होंदा है। जिस तख्त लई दुनिया इतना संघर्ष कर दी है, इतना लड़ दी है, गालिब कहिंदे ने इस ते बैठ के मैं खुश नहीं हो सकता, इते बच्चियां दा खेल है, कुछ भी नहीं। एक बात है अजाज मसीहा मेरे आ गए, गालिब कहिंदा हजरत ईसा दे मौजे भी बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं है। वो किसे अंधे दे सिर ते हथ रखदा है उन्हों सुजाखा कर देंदा, किसे बीमार दे सिर ते हथ रखदा है तंदुरुस्त कर देंदा, किसे मुर्दे दे सिर ते हथ रख देंदा है तो जिवा देंदा है। गालिब कहिंदे है जिसनू जिवा दिता है क्या फिर नहीं मरिया, जे फिर मरिया तो बच्चियां दा तमाशा करदा रहा और की। कहिंदा मैं ईसा दे नाल भी जी नहीं सकता, ये भी बचपना है, मैं तख्त सुलेमानी ते भी बैठ के जी नहीं सकता, ये भी बच्चियां दा खेल है, और मैं संसारी मनुखां दे नाल भी जी नहीं सकता, सब बच्चे ने। जद मनुख की सोचनी बड़ी बुलंद हो जाए, यकीन जानो आम मनुख उस बच्चे प्रतीत होने लग पेंदे, बिल्कुल बच्चे। गालिब कहिंदा मैं जीवां ते किस तरह जीवां, मेरे लिए जीवना बड़ा औखा है। हुण इस तरह का मनुख या ते जीवन शैली नूं बदले या इस जीवन नूं भुलाण दी कोशिश करे या मिटाण दी कोशिश करे, तीन तरीके ने, या ते जिंदगी नूं बदले या जिंदगी नूं मिटावे या जीवन नूं भुलाण दी कोशिश करे। इसने तीसरा तरीका चुन लिया, शराब पी के अपने आप नूं भुलाण दी कोशिश करदा रहा, सवेरे पींदा है दोपहरे पींदा है, नशा टुटन ही नहीं दिंदा। इतना अजीम चिंतक,
इतना गहरा दार्शनिक हर वक्त नशे च रहिंदा है और हालात इत्थे तक पहुंच गए, बाल बाल करजाई हो गया, अंग्रेजों की हुकूमत हो चुकी सी, बहादुर शाह नूं रंगून की जेल विच कैद कर दिता सी। ये दरबारी शायर भी सी बहादुर शाह का, तो अंग्रेजा ने इसनूं सियाणा चिंतक दार्शनिक जान के उस जमाने च 84 रुपए इसकी माहवार पेंशन बन दिती, और बहुत सन 84 रुपए उस जमाने दे, पर इस सारे दी शराब पी जांदा सी, सारा दिन पीनी, नशा टुटन ही ना देना, पीनी पिलानी बस इसे चीज जो है हर वक्त गायब रहने लग पे। हालात इत्थे तक पहुंचे है, मुफलसी, बाल बाल करजाई हो गया। अज बेगम आके अगों रोई भी अज मैं थोड़े लिए खाना भी नहीं बना सकती, घर विच कुछ भी नहीं है, और कोई बाणिया कोई दुकानदार मैनू उधार देने नू तैयार नहीं, ते थानू जो कुछ मिलता है पी लेंदे हो। अद्धा हिसाब किताब मेरे हवाले करो, अद्धी रकम ते मैं कम से कम घर ते चला सका, थोड़े लिए रोटी की दिक्कत ते ना होए। वक्त दा इतना अजीम मनुख रोटी तो भी आतर हो गया सी। घरवाली नूं रोंदे होया ते मजबूर हालत विच देख के गालिब कहिंदा, अच्छा खुदा दी कसम हुण जद पहली तरीक आवेगी 84 रुपए मिलणगे, अद्धे तैनू दे दें, अद्धे तेरे। खुश हो गई बेगम, उसने कह दिता फिर मैं 2-3 महीने च सारा उधार भी ला देंगी, घर भी ठीक चलेगा, तुसी अद्धे मैनू दे दिता। खैर ज्यों द्यों करके इसने दिन टपाए, पहली तरीक आई, घरों बड़े सोहने ढंग नाल बेगम ने विदा कीता, और उड़ीक दे घर दी चौखट ते ही बैठ गई, हुणे गालिब आएगा। दोपहर हो गई नहीं आया, दोपहर ढल गई नहीं आया, शाम पै गई नहीं आया। दुखत होई, मायूस होई बेगम। ज्यों सूरज ढलिया थोड़ा जिहा हल्का हनेरा पैण लगा, लड़खड़ांदा होया गालिब आंदा होया दिखाई दिता है। 10 खचरां दे उत्ते शराब दियां बोतलां लदियां हुई, इस तरह ही करदा हुंदा सी, फिर दिन रात पींदा रहिंदा सी। घर दे खचरां बूहे ते आ गईयां, शराब दियां लदियां हुई, आप भी लड़खड़ांदा होया जारो जार फुट के रो पई बेगम। और ए बेगम ने आख्या, तुसी खुदा दी कसम चुकी सी कि अद्धी माया दे देंगा, कि तुसी सारे दी शराब ले आए, और मैं महीना किस तरह लगाऊंगी, तुसी खुदा दी कसम चुकी सी। गालिब कहिंदा है, उसे खुदा ने मेरी कसम तोड़ दित्ती। किस तरह? कहिंदा है, जद मैनू 84 रुपए मिले ना, मैं बिल्कुल घर दी तरफ आ रहा सी, कि 84 दे 84 तैनू देने सन, पर करां की, रस्ते च खुदा दा घर पै गया, मस्जिद पै गई, मौलवी वाज दे रहा सी। असी कहिंदे आ कथा करनी, हो कहिंदे वाज देण, मौलवी वाज दे रहा सी, तो मैं सोचिया चलो खुदा दी गल भी अज सुन ली है। की कहिंदा है मौलवी? सारे स्रोतियां नूं नमाजियां नूं मुतासर होके कह रहा सी, सारियां नूं मुखातब करके, कि रोजी दहिन खुदा है,
ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹਿੰਦ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਗਾਲਬ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਤਨੀ ਉਦਾਸੀ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੋਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਾ। ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਤਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੂੜ ਬੰਦੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਜਿਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਬਿਰਤੀ ਸਿਆਣੇਪਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਓ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾ, ਹਕੀਮ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਮੋਮਨ ਜੈਸਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮਰਨ ਦਾ, ਅਬ ਤੋ ਘਬਰਾ ਕੇ ਯੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਪਰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੋ ਕਿਧਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਤਨੀ ਉਦਾਸੀ ਚ ਕੀ ਜੀਵਣਾ, ਇਤਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੀਣਾ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੀ ਉਦਾਸੀ ਪੱਲੇ ਪਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰਵੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਅਕਾਰਬ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵੇ। ਤੋ ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇਗਾ। ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ, ਔਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਪ ਤੇ ਜਾਪ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਪ ਜਾਪ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਜਪ ਜਾਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਜੇ ਮੂੜ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਤਨੀ ਮਰਜ਼ ਕਰ, ਅਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ। ਜੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੈਸੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਧੌਂਕਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਵਾਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਔਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ,
कि मैं नहीं जीवना चाहता, उदास हो गया सी। खुद नू खत्म भी ना कर सकया, खुद नू बदल भी ना सकया, खुद नू भुलाने की कोशिश करन लग पे पी गए। ये सदी बहुत सियानी सदी है, ज्ञान विज्ञान ने बड़ी तरक्की की थी है और बड़ी तेजी नाल ज्ञान चले है। कदम कदम ते स्कूल कॉलेज और जितनी सियाण बद गई उतनी उदासी बन जो है बद गई, और जितनी उदासी बद गई है उतनी शराब बद गई, उतनी लोकी पानी दी तरह पीण लग पे, लोकी बेहोश होना चाहते, अकल तो थल्ले जीवना चाहते, ना सोचिए क्योंकि सोचदे आते बेचैन, सोचदे आते दुख, सोचदे आते तकलीफ। उदास होने दे ए तीन कारण ने, या ते दिमागी तल ते जीवे बहुत सियाणा होए, या उसनू कथा कीर्तन चोट कर गई है, या संसार तो कोई चोट लग गई है, परिवार तो कोई चोट लग गई है, उदास हो जाएगा। लेकिन एक खतरा है, जड़ी संसार तो चोट लगे है लाजमी नहीं है ये जिंदगी नू बदलन की कोशिश करे, बल्कि अक्सर मौका तो यह आता है जिंदगी नू खत्म करने की सोचता है। सारी दुनिया च लोकी सुसाइड कर देने, आत्महत्या होंदी है, और संपन्न अमीर देशां ज्यादा है बनिस्पत गरीब देशां दे, क्योंकि गरीब इतना उदास ते निराश नहीं आउंदा, वो कल दी आसा बनाई रखता है, चलो अज मेरे कोल कुछ नहीं ते कल हो जाएगा। ये जिहड़ी कल दी आसा है उन्हूं निराश नहीं होण देंदी। जिस मनुख की जिंदगी च कल रहा ही नहीं, जो कुछ चाहिए अज प्राप्त है तो तृप्ति नहीं हुई, सुकून नहीं मिलिया, तो उदास तो हो जाएगा। तो हुण यह किस तरह जीवे, किवें जीवे, ये तो खुदकशी करेगा, सुसाइड करेगा, सारी दुनिया च है, या तो कोई संसार तो चोट लग गई है, या अपनी सोचनी बड़ी प्रबल है, या सतगुरु दे शब्द ने चोट कर दिती है, परमात्मा दे नाम ने चोट कर दिती है। ये अलग अलग चोटां दे नतीजे अलग अलग होणगे। अगर शब्द ने चोट कीती है ये सुसाइड नहीं करेगा, आत्महत्या नहीं करेगा, ये खुद नू बदलेगा। जिस ढंग नाल मैं जी रहा इस तरह नहीं जीवना, जिंदगी बदलनी है, जीवन नू बदलना है। पर संसार तो चोट लग गई है, लाजमी नहीं कि जीवन नू बदले, हो सकता जीवन नू खत्म करने की कोशिश करे। ते सोच सोच के इस नू चोट लग गई है, जगत कुछ भी नहीं है, लाजमी नहीं है जगत जो है जीवन नू बदले, हो सकता जीवन नू भुलाने की कोशिश करे, शराब पी के कोई भी नशा करके। नशे दुनिया च इस सदी तो नवे प्रचलित हुए ने, क्योंकि सदी बड़ी सियाणी सदी है और बड़ी उदास सदी है। किस तरह जीए, जिहड़े मनोरंजन दे साधन अज मौजूद ने पहले नहीं सन, और जितना उदास अज दा मनुख है पहले कदे ही नहीं सी, क्योंकि अजोका मनुख सोचदा बहुत है, विचारदा बहुत है। मैं फिर दोहरा दें, आप सारे सियाणे बैठे हो, उदास बिरति तीन कारण करके पैदा हो सकती है, या तो खुद हर वक्त सोच विचार दे तल ते जीए और बड़ी गहरी उसकी सोचनी होवे, इस जीवन नाल सहमत नहीं होएगा, ना संसार नाल, इत कुछ भी नहीं है, किस तरह जीवी है, जैसे गालिब ने कह दिता किस तरह मैं जीवा, इन्हां बच्चियां दे च मैं किस तरह जीवा, इस बचकानी जिंदगी नूं मैं किस तरह जीवा। एक ते अपनी सोचनी तो उदास बिरती दा जन्म हो सकता है, दूसरा कोई चोट लग गई है, बहुत वड्डी बेइज्जती हो गई है, बहुत गहरी चोट लग गई है, और ऐसा प्रतीत हो गया है कि कुछ भी नहीं जगत, ये जीवन कुछ भी नहीं, उदास हो गया है। या जपदियां जपदियां परमात्मा ने नाम नहीं चोट कर दिती है, गुरु दे शब्द नहीं चोट कर दिती है, कथा कीर्तन तो ही चोट खा गया है, उदास हो जाएगा।
कथा कीर्तन ने अजे चोट नहीं की थी। दरअसल कथा कीर्तन तो इसने अपने मन नु बचाया, एक पासे कीता है, इस वास्ते चोट नहीं की थी। ये उदास नहीं होया, अजे सोचदा समझदा नहीं पिया, अजे सोच विचार दे तलते नहीं जी रहा, अजे जिवें पशु जी रहे ने इस तरह ही जी रहा है, शरीर दे तलते, दिमागी तलते नहीं जी रहा, या अजे इस नु कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, इस वास्ते उदास नहीं। जो भी थानू उदास ना दिखाई देवे, इन्हां तिन्हां च कुछ ना कुछ ते गल होवेगी, या तो बिल्कुल पशु की तरह होवेगा, दिमाग तो थले जी रहा होवेगा, शरीर के तलते कोई सोचनी विचारना नहीं है, या इसनू कोई चोट नहीं लगी, या जे कथा कीर्तन इसके हिरदे नू छू नहीं गया। संसार तो जिहड़ी चोट लगती है, मैं फिर दोहरा देवा, जब मनुख उदास होंदा है लाजमी नहीं ये अपने आप नू बदलन की कोशिश करे, हो सकता है अपने आप नू खत्म करने की कोशिश करे, खतरा है, बहुत वड्डा खतरा है, सारी दुनिया च खुदकशी मौजूद है, कौन कर देने जो चोट खा जाते हैं और कहने नहीं जीवना की करना है जी के, इतने निराश हो जाते ने, इतने उदास हो जाते, जीवना औखा हो जाता है उन्हां लई और खुदकशी कर लेंदे ने। हां 5% ऐसे मनुख ने जो खुदकशी नहीं करते, जगत तो चोट खा के अपने आप नू बदलन की कोशिश करते ने, जैसे कि राजयोगी परतरी, ये योगी बनया, ये संत बनया कथा कीर्तन तो चोट खा के नहीं, इस तरह के पुरुष नहीं सी। और ये भी अर्ज करते हैं, इसनू चोट घरों लग गई और इसने गल नू छुपाया भी नहीं। वैराग शतक जो इसका ग्रंथ है, उहदे च कहिंदा मैं संत क्यों बनया, उन्हें कारण भी दस दिता है, जोगी मैं क्यों बनया, कोई मैं सत्संगी नहीं सी, कथा कीर्तन जाके नहीं सुनदा सी, ते मेरे उपर असर पै गया, ते मैं उदास हो गया, निराश हो गया, इस तरह की कोई गल नहीं। फिर जोगी क्यों बनया, कहिंदा जिन को चित मैं नित मैं चित मोह तिन की तन मोह तन माए रती ना, वो आन पुमान के संग रति फुन तामन में गन का ग्रह कीना, धृग है अब लाभृद कंदरब पे और मोए धिकार जो मार अधीना, इस रीत समूह की प्रीत तजी निरप होए जोगीश्वर ईश्वर चीना। इनू घर तो चोट लग गई, घर वाली तो पिंगला इसकी चहेती राणी सी। इहदे तीन ग्रंथ ने, वैराग शतक, नीति शतक, शिंगार शतक। वैराग शतक इसका बहुत कीमती ग्रंथ है और गुरु नानक की कृपा भी भरतरी ते बहुत ज्यादा सी, दो तीन शब्द भरतरी दे प्रति सतगुरु ने उच्चारण किए ने, सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म नहारे, कह नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत धारे। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये कहिंदा जिन को चित मैं नित मैं चित मौ तिन की तन मौ तन माए रतीना, जो मेरे चित दे च हर वकत सी, मैं कदी जिस नूं भुलाया ही नहीं, उस दे चित दे च मैं नहीं सी, जिन को चित मैं नित मैं चित मौ तिन की तन मौ तन माए रतीना, वो आन पुमान के संग रति फुन तामन में गन काग्रह कीना, मेरे चित दे च पिंगला सी हर वक्त, मैं उस नूं याद कीता है, पर पिंगला दे चित दे च मैं नहीं सी, वो आन पुमान के संग रति फुन तामन में गन काग्रह कीना, उते गनका बनी हुई, उते परश पुरश दा जो है उसके मन दे चिंतन ते उसका संग। परतरी कहिंदा जिस दिन मैनू पता चलिया कि जिसनू मैं प्राणा तो भी ज्यादा प्यार किया, हर वक्त याद किया, उसके चित दे च मैं नहीं हां, वो आन उपमान के संग रति फुन ता मन में गनकाग्रह कीना, धृग है अबला ब्रित कंदरब पे और मोए धिकार जो मार अधीना, ऐसी स्त्री ते लानत जिसका पति छत्रपति राजा होए और वो अपने चित दे च उसनू थां ना दे। ते भरतरी कहिंदा मेरे ते भी लानत कि मैं जिंदगी दा मकसद एक स्त्री ही समझ लिया, ये कहिंदा मेरे ते मोए धिकार, मेरे ते भी लानत,
और मोह दिकार जो मार अधीना श्रीत समूह की प्रीत तजी निरप होय जोगीश्वर ईश्वर चीना। इस तरह की रीत मैं छोड़ देती है। राजा होंदे होया जोगी हो गए, नवी जिंदगी की तलाश, ये जीवन नहीं चाहिए, ये संसार मैनू नहीं चाहिए, कुछ होर दुनिया की तलाश। गोरख कहिंदा कोई होर दुनिया भी है तो उसका चेला बन गया, वो जिहड़ी होर दुनिया है मैं उत्थे वसना इस दे च नहीं, वो जिहड़ा होर जीवन है मैनू वह चाहिए है, ये नहीं, मैं उस दे च जीवना है। ये घर तो ही चोट खा गया, भाव संसार तो ही चोट खा गया। ऐसा भी आउंदा है कि घर तो संसार तो चोट खा के कोई जोगी बन गया, संत बन गया, गुरमुख बन गया, भगत बन गया, और शब्द का चोट यह तो लाजमी 100% वो संत बनेगा, लेकिन संसार तो चोट लगी है लाजमी नहीं कि संत बने, भगत बने, परमात्मा की तलाश करे, हो सकता है खुद नूं खत्म करने की कोशिश करे। और जो बहुत सोच सोच के उदास हो गया है, बहुत उच्चा सोचे है, बहुत गहरा सोचे है और उदास हो गया है, लाजमी नहीं ये भी संत भगत बने, हो सकता है ये अपने आप नूं भुलाने की कोशिश करे। बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े फिलोसफर दिमागी तल ते जीण वाले करीबन करीबन 99% शराबी ने 1% नूं छोड़ के और रज के पींदे ने। किसी दे ज्ञान दे नाल भरी हुई कोई वड्डी किताब पढ़ के, उदियां कवितावां नूं पढ़ के, उदा दर्शन ते फिलसफा सुन के किधरे इस चक्कर च ना पै जाना कि ते आसमान दा वासी है, इतने सतवें आसमान ते रहिंदा होवेगा। नहीं, कदी खोज करोगे तो किसी पब च मिलेगा, लड़खड़ा होया मिलेगा। मैं 1% दी जो है गल कर रहे हैं, वो शायद बचे हुए ने। एक बड़ा बुलंद पाया हिंदुस्तान दे शायर सी फिराक गोरखपुरी, जिन्हों सारा मुस्लिम जगत हजरत करके पूजदा सी, उंज हिंदू सी, राम नारायण फिराक गोरखपुरी 50-60 किताबां दा लिखा रही, बड़ा अजीम चिंतक। दिल्ली लाल किले विच 26 जनवरी वाले दिन पंजाबी कवि सम्मेलन होंदा है, हिंदी कवि दरबार होंदा है और उर्दू दा मुशायरा होंदा है, वारी वारी एक एक दिन। और जिन्नियां साहित्यक रुचियां दे मालक लोग ने वो सारे पहुंच दे, लखां दा उत्थे इकट्ठ पहुंचदा है, हिंदी कवि सम्मेलन विच, पंजाबी कवि दरबार विच और उर्दू मुशायरे विच। शुरुआत उर्दू मुशायरे तो आउंदी है, पहले दिन उर्दू मुशायरा आउंदा है, बड़ी दुनिया पहुंचती है। इस सारा प्रोग्राम टेलीकास्ट भी आउंदा है। रात दे समय वक्त कढ के मैं भी एक दिन टीवी दे सामने बैठा फिराक गोरखपुरी नूं सुनन लई। ये 50 किताबां दा लिखारी, इन्ना गहरा सोचण वाला, और इसकी सोचनी सत्तां आसमानां नूं पाड़ के भी अगे लंघ जांदी है कि अज दे दिन की आखेगा, कोई बड़ी वड्डी नज़म सुनाएगा, बड़ी कीमती कीमती बोल। और जद अनाउंसर ने फिराक गोरखपुरी का नाम लिया कोई 11वें-12वें नंबर ते, तो मेरा पूरा ध्यान एकागर हो गया, भाई इसनों सुनिए, एक एक लफ्ज इसका सुनिए। उदास होए बिना नवे जीवन की तलाश करनी बड़ी औखी है। जो इस संसार को उदास ही नहीं, निरंकार की किस तरह तलाश करेगा, मुश्किल है। और जैसे शब्द चोट कर गया है, उदास हो गया है, ये बंदा अगर मुसलमान है तो शरा का पूरा पाबंद हो जाएगा, अगर ये बंदा गुरुद्वारे आ रहा है तो सारी रैत वैत का धारनी हो जाएगा एकदम, और ये बंदा अगर हिंदू है तो पूरा कर्म कांड अपना लेगा फौरन। शब्द ने चोट कर दी, संघ ने चोट कर दी है, तो जब सत्संग ने चोट की थी है
तो यह अपने इष्ट का पूर्ण तौर पर बनने की कोशिश करेगा। अगर कोई हिंदू पूर्ण तौर पर कर्मकांडी नहीं होया अजे सत्संग ने चोट नहीं की थी। अगर कोई मुसलमान पूर्ण तौर पर शरा का धारनी नहीं होया यकीन जानो अजे नमाज ने चोट नहीं की थी। अजे कुरान की तलावत का कोई असर नहीं होया, कुछ भी नहीं। कोई पूर्ण तौर पर रहत वैत का धारनी नहीं होया अजे शब्द ने चोट नहीं की थी। अजे कथा कीर्तन ने कदे ही चोट नहीं की थी। ए, मन नु एक पासे कर जांदा रहा, शब्द का तीर लंघ जांदा रहा, नहीं लगे। अगर लगता तो यह पूर्ण तौर पर रहत वैत का धारनी हो जाता। अगर सत्संग ने चोट की थी है तो पूरा कर्मकांडी हो जाना सी इसने, और जे मुसलमान है तो पक्का शरई हो जाना सी। पांच वक्त का पक्का नमाजी और पूरी कुरान की तलावत करने वाला, जकात देने वाला, रोजे रखने वाला, किसी भी नियम नु छोड़न वाला नहीं। पूरी पुख्तगी पकया ही। हुण जो कुछ मैं कहन लगा उन्हों थोड़ी जी गहराई नाल सरवण करना। साल दो साल पांच सत साल शरा दे च लंघे ने, कर्मकांड दे च लंघे ने, रहत वैत दे च लंघे ने, लेकिन नवी जिंदगी प्राप्त नहीं हुई, नवा जीवन प्राप्त नहीं होया। तो दो शब्द बर्दाश्त करने, ये बंदा शरा तो भी उदास हो जाएगा, ये बंदा कर्मकांड तो भी उदास हो जाएगा। तो हाथ जोड़ के मैं माफी मंग लवा, मैं गलत होवा तो मेरी सुधाई भी कर देना, ये बंदा रहत बैत तो भी उदास हो जाएगा। क्यों? जिसले शिंगार कीता है उहदी झलक नहीं मिली। पांच सात साल हो गए ने, दस साल हो गए ने, क्योंकि सोचण वाला बंदा है, ताहीं ते शब्द ने चोट की थी। सोचदा ना तो चोट लगनी नहीं सी, चोट ते स्याणे नूं लगेगी लाजमी। 90% खुदकशी स्याणे बंदे करदे ने, मूड नहीं करदे, औखे ना होना। और अपने आप नूं भुलाण दी भी कोशिश होई करदे ने, जो बहुता सोचदे ने ते बहुते सोचण करके गमगीन हो जांदे ने, ते अपने आप दे नाल बैठना बड़ा औखा हो जांदा है। अपने आप नूं भुलाण दी कोशिश करदे ने। मनुख पुत्र नाल बैठ सकदा है, मित्र नाल बैठ सकदा है, पत्नी नाल बैठ सकदा है, पति नाल बैठ सकदा है, कोई किताब चाहिए टीवी नाल बैठ सकदा है, रेडियो नाल बैठ सकदा है, मनुख अपने आप दे नाल नहीं बैठ सकदा, कोई भी नहीं बैठ सकदा। क्यों? जैसे अपने आप दे नाल बैठदा सिवाय बेचैनी तो होर कुछ भी नहीं है। हर मनुख दौड़ रहा है कितों? अपने आप तो भजो, अपने आप तो भजो, दूसरे कोल बैठो। पर कौन दसे दूसरे कोल भी यही सियापे ने? यही कुछ है, दूसरा भी यही कुछ। किस पे खोलो गंठड़ी दुखी भरा आया। महाराज कहते मैं गंढ के अगों खोलना चाहिए, अगो खोलन लगना अगे पहले ही खोल के रख देना। मैं एक दुख की गल करदा, वो दस दुख की गल करदा। बस दो दुखी बैठ के अपने दुख नू बुला सकते ने, मिटदा कोई नहीं। यह भी मैरज करते हैं वक्ती तौर पर बुलाण का एक ढंग आउंदा है। इस वास्ते कहने ने इकला ते रब भी ना होवे, इकल अखर दी है। ते जिन्हों इकल अखर दी गल स्पष्ट हो गई, अपने आप दे नाल नहीं रह सकदा। और क्यों नहीं रह सकदा? इहदे कोल कुछ भी नहीं है, तां ही नहीं रह सकदा। जो अपने आप दे नाल रह सकदा है बड़ा महान मनुख है, बहुत वड्डा मनुख है। इह वी मैं उहदे कोल कुछ है। ऋषि यागवलग गंगा दे तट ते बैठा सी, उसदे मित्र ने देखिया कला बैठा है ऋषि, चलो चल के साथ दे दईए। जाके कोल बैठे ते आखिया संत जी तुसी कल्ले बैठे सी ना, ते मैं थोड़ा साथ देण लई आ गया। यागवल्लभ कहण लगा तैनू किसने कह दिता मैं कल्ला बैठा सी? मैं ते अपने नाल जुड़िया होया सी, हुण तू आया मैनू कल्ला कर दिता, मैनू अपने नालों तोड़ दिता, मेरे ते रहम खा, तरस कर, मैनू अपने आप दे नाल बैठण दे। ठीक है, वी ढंग है, ठीक है, वी तरीका है। वरना इकलेपन नूं आम दुनिया ते सजा मनदी है। पता है जेल दे जिस नूं सब तो करड़ी सजा देनी होवे उन्हूं कला रखदे ने, तनहा, आपे ठीक हो जाएगा, इन्हूं पांच सात दिन कल्यां रखो। तनहाई सजा है,
ਕਿਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੰਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੰਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੇੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਉਲਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੌਕੇ ਹੀ ਹੌਕੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਸੌ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੰਢ ਖੋਲਣੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਓ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਔਖੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਗੰਢ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਆਉਂਦਾ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੀ ਆਦਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਦਲਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤਿੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੇ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਗਵਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੇ ਹੌਕੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੌਕੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੌਕੇ ਇੱਕ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਸਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਕੇ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਹੌਕੇ, ਇੰਨੀ ਸੜਾਂਦ, ਇਤਨੀ ਜਲਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੈਸੇ ਜਲਗਾਓਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ।

अब पहला सब रस मिठे मनिए सुनिए सालोणे खट तुरसी मुख बोलना मारण नाद किए छती अमृत भाव एक जाको नदर करे बाबा और खाना खुशी खुआर

हृदय विकार ये ठीक है कि जीवन व्यापक है बनस्पति दे च है पशु पक्षियां दे च है आदि मनुख प्रकृति दे हवाले सी पहाड़ां दियां कंदरां च रहिंदा सी रुखां तले रहिंदा सी और प्रकृति ही जो उसनू खाण नू देवे ओही खांदा सी इसदा स्वयं दा कोई चुनाव नहीं सी क्योंकि मनुख अजे सभ्य नहीं होया सी प्रकृति ने जो फुल दे दिते फल दे दिते ओ खा लिया पर जद फुल ना मिले फल ना मिले तो फिर पशुआं दा शिकार इस ते जीवन बतीत होंदा रहा जिंदगी इस तरह लंघदी गई आखिर सहजे सहजे मनुख सभ्य होया सभ्य तो मुराद सभा दिच बैठन दी जा चाहिए सभा नू समझन दी जा चाहिए सभा दिच अपने आप नू पेश करने दा ढंग इस नू आया और जो विचार मैनू नहीं चंगे लगते उस सभा नू भी नहीं चंगे लगते सभा मैनू कैसी चंगी लगती है और सभा नू मैं किस ढंग नाल चंगा लग सकदा इस सोचनी दा जदो जन्म होया और इस सोचनी दे अनुकूल जद मनुख ने अपने आप नू ढा लिया तो उस नू आख्या गया सभ्य तो इसकी सोच दे च ए भी गल आई कि मैं थों घट तो घट किसे नू दुख पहुंचे चोट पहुंचे तो मेरे आहार दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे मेरी खुराक दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे वैसे ते बनस्पति दे च भी जी दाणियां दे च भी जी और पहला समग्र व्यापक जीवन पानी पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोय अहिंसक ते मनुख हो नहीं सकदा नहीं ते पानी दा त्याग करना पेगा बनस्पति दा भी त्याग करना पेगा दाणियां दा भी त्याग करना पेगा क्योंकि जे ते दाणे अन्न के जिया बाज न कोय बस इतनी सोचनी अंदर जन्म लवे कि मेरे आहार तो दूसरे नू चोट घट पहुंचे पशुआं दा कुछ ऐसा जगत भी है जिथे मन विकसित हो गया है और मानसिक पीड़ा महसूस होंदी है और जिथे मानसिक पीड़ा ज्यादा महसूस होवे उस पशु नू भी मनुष्य जैसा समझना चाहिदा है मनुख जैसा समझना चाहिदा है पर जिथे मानसिक सोचनी नहीं मानसिक पीड़ा नहीं सिर्फ शरीरक ही पीड़ा है तो ओ बनस्पति जैसे ने ओ दाणिया जैसे ने क्योंकि दाणिया नू भी जद बुनदे आ तड़पदे ओ भी ने दाणिया नू भी जद बुनदे आ उछलदे ने तड़पदे ने आवाज भी करदे ने तिड़तिड़ करदे ने इह इना दे चीखण दी आवाज है तड़पदे होए किसे पशु नू वेख के अगर मानसिक पीड़ा महसूस होवे तो उस नू तड़पदे होए दाणिया नू वेख के भी पीड़ा महसूस होनी चाहीदी है दर्द महसूस होना चाहीदा है फिर भी खुराक खान लगियां उदी ए सोचनी होवे कि मेरे आहार तो दूसरे नू घट तो घट ही चोट पहुंचे ताकि ऐसा आहार मैनू चोट ना पहुंचावे जिस आहार ने दूजियां नू चोट पहुंचाई है ए आहार इस नू भी चोट पहुंचाएगा एदे तन नू रोगी करेगा एदे मन नू पीड़ित करेगा करीबन करीबन 90% मनुख दी अज खुराक ऐसी है दूजियां नू चोट पहुंचा के हासिल कीती जा रही है तो चोट पहुंचा के हासिल कीती गई खुराक खुराक भी चोट पहुंचाएगी खुराक भी जरब करेगी इस वास्ते गुरु नानक दा ए फैसला बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार हे बाबा हे मेरे मित्र हे सियाणे सुचेत रह तेरे शरीरक रोगां लई तेरी मानसिक पीड़ा लई 90% ते जिम्मेवार है तेरा आहार तो जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं वो विचार दे प्रति सुचेत नहीं हो सकदा जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं वो अपने शरीर दे प्रति भी सुचेत नहीं हो सकदा और जो शरीर ते मन दे प्रति सुचेत नहीं उनु सभ्य नहीं कहा जा सकदा असभ्य मनुख है अजे उसनु सभा दिच बैठन दी जाच नहीं आई अजे उस दे अंदर पूर्ण तौर ते मनुखता प्रगट नहीं हुई तो प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अपना उपदेश अपना संदेश खाने तो आरंभ करदे ने फिर दूसरा आप पहनने दा उपदेश देंदे ने।

मनुरता सुपेदी सतदान नीली सिहाही कदा करणी पहरण पैर ध्यान कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम बाबा होर पैनन खुशी खुआर जित पैदे तनु पीड़िए मन में चले विकार। खान पीण तो बाद पहनन दी मनुख सोचता है और ये सिर्फ मनुख ही सोचता है या इंज कह लो पहनन तो ही मनुखता आरंभ होंदी है। पहनन बारे पशुआ ने नहीं सोचे पंछिया ने नहीं सोचे। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते कहंदे ने विस्माद नांगे फिरे जंत। इन्ना नंगे पशुआ नू देख के मैं ते विस्मादमयी हो जांदा विस्मय हो जांदा है। इन्हां दे अंदर पहनन दा ख्याल नहीं पैदा होया। ये इस तरह दे नाल नग्नता दी प्रदर्शनी कर रहे ने। एक मासूम बच्चा नवजायद बच्चा उस दे अंदर भी अजे पहनन दा भाव नहीं पैदा होया। ए गल वखरी कि चीथड़िया विच कपड़िया विच मां बाप उस नूं लपेट के रखदे ने पर पहनन दा भाव अजे उस दे अंदर नहीं पैदा होया। इस वास्ते कह देंदे ने ए मासूम बच्चा अजे असभ्य है। सभ्यता ते बुद्धि दे विकास दे नाल नाल ही हुंदी है तो अजे बौद्धक विकास नहीं होया। ए बच्चा मासूम इस तरह नगन निर्दोष है जिस तरह के पशु नगन निर्दोष ने। मनुखता नहीं आरंभ हो सकी। मनुखता सोचण नाल आरंभ हुंदी है और पशु सोच दे तो लाजमी वो पहनण लई भी सोच दे और नगनता उन्हां नूं महसूस हुंदी या इंज कह लो मनुखता इत्थों ही आरंभ हुंदी है जद नगनता महसूस होण लग पे। यही कारण है कि जिस दे अंदर मनुखता ना आवे साडी भारतीय परंपरा दे मुताबिक कह देंदे ने ये मनुख बहुत नंगा है बिल्कुल नंगा है। नंगे तो मुराद अजे इस दे अंदर ते पहनण दा ख्याल भी नहीं। इस ख्याल दे नाल ही मनुखता दा जन्म है वरना खाण पीण दा ख्याल ते पशुआं दे अंदर भी है। ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं अगर मनुख दे अंदर है। मनुखता आरंभ होई पहनना है ढकना है कुछ आजा ढकने ने मैज इसलिए ढकड़े ने कि मनुख दा शील संजम दे चरवे। मनुख दियां वाशनावां शील संजम दे चरेन। मनुख दे मानसिक वेग मर्यादा दे जहन नगनता उतेजना पैदा कर सकती है। नगनता भड़काऊ हो सकती है। यही कारण है भड़के हुए मनुख नूं और जिसने अपनी वासना उजागर कर रखी होवे आले दुआले कह दिता जांदा है नगन है नगन है। पहनना तो इस वास्ते सी कि नगनता नूं ढकना है ते नगनता नूं इस वास्ते ढकना है कि भड़कियां हुईयां वासनावां नूं जो है ढकना है मनोबिरतियां नूं ढकना है। लेकिन कपड़िया दे राही वाशना नूं उजागर करन दा ख्याल पैदा हो जाए कपड़े ही वाशना दी प्रदर्शनी करन लग पैन तो एक कपड़िया दा गलत इस्तेमाल है। जैसे खाना पीना ते इस वास्ते सी कि शरीर दी भुख मिटे ते तंदुरुस्ती मिले पर खाना पीना ही रोगी कर देवे विकारी कर देवे तो ए मकसद दा हल ना होया। खाने ते जो लक्ष्य दी पूर्ति होनी सी भुख मिटे ते शरीरक तवानाई दी प्राप्ति होवे भुख जरूर मिटी है लेकिन तंदुरुस्ती नहीं मिली बीमारी मिली है मानसिक विकार मिले ने खाने दा लक्ष्य पूरा नहीं होया। पहनण दा ते लक्ष्य ए सी वाशना ना भड़के और दूजियां दियां वाशनावां भी सीमा विच रहन नगनता प्रगट ना होवे खास करके विपरीत नगनता तो बिल्कुल प्रगट नहीं होनी चाहिए मनज़र आम ते नहीं होनी चाहिए।
पर कपड़ियां दे चों नगनता प्रगट होवे। कपड़े ही वाशना दी प्रदर्शनी करन। ऐसा हो सकदा है अगर कुछ खाना पीना रोग पैदा कर सकदा है, जबकि खाना पीना रोग लई नहीं, तो कुछ पहनना भी विकार पैदा कर सकदा है, जबकि पहनना विकारां लई नहीं है। इस वास्ते इस पैरे देवी मुख पंक्ति देच गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर देने, बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़ी है, मन में चले विकार। हे सियाणे, ओ पहनना जो तन देच खुआरी पैदा करे, मन देच विकार पैदा करे। इस संबंध च इंज कह लो, जब देच ए पहले विचारक ने गुरु नानक देव जी महाराज जिन्हां ने सोच रहा है कि कुछ पहनना भी विकारां नूं जन्म देंदा है, कुछ पहनना भी खुआरी नूं जन्म देंदा है, पैगंबरी पुरुषां दे चों, अवतारी पुरुषां दे चों, चोटी दे सिरमौर संतां दे चों, ए पहला उपदेशक है जो पहनण वाले भी कहिंदा संजम चाहिदा है। जिथे खाण पीण बारे संजम चाहिदा है, सोच चाहिदी है, मर्यादा चाहिदी है, उथे पहनण बारे भी आपने शिक्षा दिती है। कुछ ऐसा पहनना जो शरीरक रोगां नूं जन्म दे सकदा है, कुछ ऐसा पहनना जो मन विच विकारां नूं जो है जन्म दे सकदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, अगर इस तरह दियां मनोबिरतियां आवन तो मनुख ऐसे सादे कपड़े पहनेगा, ओ लिबास नहीं जो दूजियां दी वासनावां विच उतेजना पैदा करन ते अपने मन नूं भड़कान। पहनना ते इस वास्ते सी कि मैं ढकिया जावा, ते जे पहनना इस वास्ते होवे कि मैं प्रदर्शित होवां, मैं प्रगट होवां, मैं दिसा, तो इह ते इस तरह है जिवें किसे औषधि तो बीमारी लभण दी कोशिश कीती जावे, किसे दवाई तो रोग लभण दी कोशिश कीती जावे। पहनना सी अपने आप नूं ढकण लई, लेकिन अजोके युग दे च पहनना हो गया है अपने आप नूं प्रगट करन लई। बहुते मनुख अज कपड़िया दे राही अपने आप नूं प्रगट करदे ने, बाकी तो उन्हां कोल कुछ है नहीं, पहनना ही पहनना है। पहरावा दसदा है, कपड़ा ढकण लई सी। इस्लाम ने ऐसा पर्दा दे दिता, ऐसा ढकिया, मनुख गायब हो गया, पर्दा ही पर्दा रह गया, कपड़ा ही कपड़ा रह गया, मनुख ना दिसिया। ईसाइयत ने इतनी नग्नता दे दिती, इतनी नग्नता दे दिती, तो नग्नता ही नग्नता रह गई, कपड़ा ओले हो गया। दरमियाना दरमियाना ढंग, दरमियानी अवस्था धन गुरु नानक देव जी महाराज ने चुनी, ओ कपड़ा ही नहीं कि मनुख नूं बिल्कुल ढक देवे, कपड़ा ही दिखाई देवे, मनुख ना दिखाई देवे, पर ओ नग्नता भी नहीं कि नग्नता दिखाई देवे, कपड़ा होवे ही ना। देखदे हां असीं किधरे मनुख नूं देखिए तो कपड़े दे दर्शन हुंदे, मनुख दे नहीं। चादर है, बुरका है, होर अनेकां तरह दे पर्दे ने, तो कपड़ा दिखाई देंदा है, मनुख नहीं। पर है किधरे ऐसी नग्नता, उस नग्नता दे च भड़काऊ वासनावां ही दिखाई देंदियां ने, भड़किया होया मन ही दिखाई देंदा है, भड़किया होया तन ही दिखाई देंदा है, लिबास नहीं, कपड़े नहीं। एक बड़ी सुंदर गाथा है, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी सुपत्नी साड़ी जगत माता गंगा उन्होंने कहा, जे थानू संतान चाहिए तो इसका आशीर्वाद तुसी बाबे बुढ़े तो प्राप्त करो। सिख नूं मान देंदे ने गुरुदेव, असीस लो, आशीर्वाद लो। बाबा बुढ़ा साहब नूं मिलन लई तैयार होईआं माता गंगा जी, तन सजाया बस्तरियां नाल, गहणियां नाल, फिर अपने रथ नूं सजाया, फिर सजियां धजियां नाल सहेलियां लईआं, सखियां लईआं, नौकराणियां दासियां लईआं।
चल पे बाबा बुढ़ा जी दे दर्शन करन लई। अक्सर ऐसा हुंदा है कि बहुत इस तरह दा शिंगार मनुख कर लवे, लिबास पहन लवे, तो अंदर भाव पैदा हो जांदा है जैसे मैं दर्शन करन लई नहीं जा रहा, दर्शन देन लई जा रहा। लिबास ए भाव पैदा कर सकदा है, लिबास ए ख्याल पैदा कर सकदा है मैं दर्शन देने ने। और जिन्हा जिन्हा दे अंदर ए भुख जितनी ज्यादा होगी उतना भड़काऊ लिबास पैदा होता जाएगा, उतना ही भड़कीले लिबास का जन्म होगा कि मैं दर्शन देने ने, मैंने दिखाना है, मैं जगत नु दसना है। पावे माता जी दी भावना नहीं सी पर संसारिक राव रीति दे मुताबिक आपने बड़े सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर गहनियां नाल अपना तन सजाया, रथ सजाया है, सजियां धजियां दासियां ते सहेलियां नाल थाल दे 36 प्रकार दा पकवान लेके आप चलिया ने। दूरों रथ जद बाबा जी ने वेख्या, धूड़ उड़दी हुई, पूछ लिया कामे तो सेवक थो ए कौन आ रहे ने, तो सेवक ने दस दिता गुरु के महल जाप देने। रसना तो स्वभाविक निकलिया, एक गुरु के महलानों की भाजड़ पै गई है। ए बोल माता गंगा जी देवी कन्नी पे वापस हो गई। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शिकायत की थी, जिन्हां नूं आप मान देंदे हो, प्रतिष्ठा देंदे हो, वो इस तरह साडा अपमान कर देने। और बाबा जी दी रसना तो निकलिया है, गुरु के महलानों की भाजड़ पै गई है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, किसे साधु कोल जाईदा है दर्शन करन लई, दर्शन देन लई नहीं। थोड़ा जान दा ढंग, थोड़े कपड़े, थोड़े गहने ये भाव भी नहीं पैदा कर सकते कि मैं दर्शन करन लई जाना है। इस वास्ते जे हर थां दी जान दी अपने एक लिबास है, अपना एक पोशाक है, तो सत्संग दे जान दा भी अपना एक लिबास है, अपनी एक पोशाक है। और वो पोशाक बार बार भावना पैदा करे कि मैं दर्शन करन लई आया संगत दे, मैं दर्शन करन लई आया गुरु दे, मैं दर्शन करन लई आया एक पावन पवित्र माहौल दे। पर जे कपड़े ऐसे होन ते सारिया की निगाह उसके कपड़िया ते पे, तो एक ते सारिया का ध्यान उखड़िया ते दूजा अपने मन विच भाव पैदा होया दर्शन देण दा, दिखाण दा। यही कारण है कि बहुत सारी मनुखता धार्मिक लाभ तो वांझी रह जांदी है क्योंकि अपने वस्त्रां दी तरफ ख्याल नहीं रखती। खास करके इस देश स्त्री जात किसी हद तक बहुत जिम्मेवार है क्योंकि उसका लिबास कई दफा देखने दे चाया सत्संग देच ऐसा होंदा है जो सत्संग दे मयार ते पूरा नहीं उतरदा। कहिंदे दूसरे दिन जद सादा लिबास पहन के दो मिस्से प्रसादे और प्याज दा गंडा थाल देच रख के बिना दासियां तो बिना रथ तो पैदल जद जगत माता गंगा जी पहुंचिया ने, अजे वे कदमा दी दूरी है, बाबा बुढ़ा जी दी रसना तो निकलिया, मां नू वाकई फिक्र होंदी है, बच्चे नू भुख लगी है, कल कुछ होर आखिया सी अज कुछ होर आख रहे ने, एकदम भज्जे हो गए, थाल ले लिया माता जी तो मंजे ते बैठ गए ने, मिस्सा प्रशादा तोड़े है, बुरकी मुंह च पाई है, प्याज दा गंडा मंजे दे पावे दे ते रख के जो मुठ नाल तोड़े है, आखे है ओ लाल मां तेरी कुख तो जन्म लवेगा जो दुष्टां दे सिर इंज बनेगा जिवें मैं इस प्याज नु तोड़े है। ए वाक प्रगट होया, दल भंजन गुरु सूरमा वड योधा बहु परोपकारी, धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का जन्म
आप दी कुखों होया। मीरी पीरी दे मालक तलवार दे धनी और शस्त्रां दे धनी सूर वीरता जिन्हां दे रोम रोम दे चों जो है प्रगट होंदी सी और जिन्हां दे चेहरे तो भक्ति भाव हर वक्त प्रदर्शित होंदा सी, ऐसे मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा जन्म वक्त दे एक महान फकीर गुरु घर दे एक महान आशिक संत बाबा बुढ़ा जी दे आशीर्वाद नाल होया। पर इस आशीर्वाद दे पिछे एक बहुत वड्डी कहानी छुपी हुई है कि किसे भी संत कोल आना है दर्शन देन लई नहीं दर्शन करन लई। एदे च कपड़िया दा बहुत वड्डा योगदान है। कपड़े कुछ ऐसे होंदे ने जो मन दे अंदर ख्याल पैदा करदे ने मैं दर्शन देने ने, और कपड़े कुछ ऐसे ने जो पैदा करदे ने ख्याल मैं कुछ भी नहीं मैं ते दर्शन करने ने, मैं ते दूजे दे जो है दर्शन करने ने। इस संबंध च एक होर भी बड़ी सुंदर गाथा है भगत कबीर जी दे डेरे। एक ऐसी पनहारी सी जो गंगा तो रोज पानी भर के लियांदी है मटकियां दे रहे और सारा दिन प्यासियां दी प्यास बुझांदी है ठंडे जल नाल रसना नाल परमात्मा दा नाम जपदी है अपने मन नूं शीतल करदी है ते दूजियां नूं शीतल पानी पिला पिला के प्यास बुझांदी है अगलियां दे तन शीतल करदी है। इस तरह मन दे तलते उसदे सिमरन चलदा रहिंदा है तन दे तलते उसकी सेवा चलती रहिंदी है। सेवा सिमरन दी ए मूर्ति अपना जीवन कबीर जी दे डेरे च इस ढंग नाल बतीत कर रही है। लेकिन एक ऐसी घटना घट गई कबीर जी दे कुछ चेले शिवरात्रि वाले दिन गंगा तट ते की देखदे ने कि वक्त दे बादशाह दी बेगम सिकंदर लोधी दी बेगम हिंदू यात्रियां नूं देखण लई आई है कि वो इत्थे आके की करदे ने किस तरह दे धार्मिक रस्मों रिवाज नूं ए प्रचलन करदे ने ए अपनांदे ने ए देख रही सी। जिथे ओ धार्मिक रस्मों रिवाज लोकी निभा रहे ने कर रहे ने देख रही है उथे कबीर दे चेले सिकंदर लोधी दी बेगम नूं देखदे ने और मैज इस वास्ते देखदे ने कि इतने कीमती कपड़े और जर्री दा कम है मोती जड़त ने किधरे किधरे नीलम भी चलम चमकदे पए ने वस्त्रां दे चों कपड़ियां दे चों। एकदम ख्याल आया उस पनहारी दा जो सारा दिन डेरे दे प्यासियां दी प्यास बुझांदी है ठंडे जल नाल गंगा तो भर के ले जांदी है। सारा दिन जिसकी रसना ते सतनाम दी धुनी चलदी है कबीर पंथियां नूं सतनामी कहंदे ने पर उसदे बस्तर लीरां लीरां ने उसदे कपड़े ते बिल्कुल फटे हुए ने मन दे ते एक शक दा बोझ पै गया ते शक ही सब तो वड्डी मैल है संसे जियो मलीन है कित संजम पोता जाए मैला हिरदा कौन। जो परमात्मा दे प्रति शक नाल भरे होया निर्मल हिरदा कौन जो परमात्मा दे प्रति विश्वास नाल भरे होया। जितना किसदा विश्वास वद्दा जा रहा है उतनी निर्मलता वद्दी जा रही है और जितना किसे दा संदेह वद्दा जा रहा है मैल वद्दी जा रही है। और संदेह ही संदेह रह जाए विश्वास रह ही ना ऐसा मनुख दुष्ट हो जाता है ऐसा ही मनुख जालम हो जाता है ऐसा ही मनुख चोर हो जाता है ऐसा ही मनुख दुराचारी हो जाता है ऐसा मनुख महान जालम हो जाता है क्योंकि परमात्मा दे प्रति संदेह ही संदेह है। और ऐसा मनुख पुनीत हो जाता है भगवंत दा रूप हो जाता है भरोसा ही भरोसा है संदेह तो है ही नहीं केवल भरोसा है। ऐसा मनुख अठे पैर समाधि लीन आउंदा है जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगट आया। ऐसा मनुख जो भरोसे ते भावना नाल भरिया होया अठे पैर समाधमई आउंदा है समाधि लीन आउंदा है अठे पैर प्रभु नाल जुड़िया आउंदा है निर्मलता दी खाण आउंदा है।
ਉਹ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪਨਹਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ, ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਲਿਬਾਸ, ਪਤਾ ਨੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਦੋ ਕੀਮਤੀ ਸਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਹੈਂਗੇ ਬਾਹਨ ਸਘਨ ਗਨ, ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ ਤਾਸੋ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੁਜੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰ। ਜੋ ਹਰੀ ਜਨ ਦੀ ਪਨਹਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁੱਛ ਨੇ। ਤਾਸੋ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੁਜੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਹਾਰ। ਤਰਕ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮਖਮਲੀ ਨੇ, ਨੀਲਮ ਜੜਤ ਨੇ, ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਖੱਦੜ ਦੇ ਨੇ, ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਨੇ, ਟਾਕੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਚੀਥੜੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੱਛ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਨਿਰਪ ਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦੀਏ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੇਰੀ ਕੋ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੀ ਚੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਥੜਿਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਉਪਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਸਨੇ ਸਾਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਲਿਬਾਸ, ਜ਼ਰੀ ਨੀਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਅਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨਿਰਪ ਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦੀਏ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੇਰੀ ਕੋ ਮਾਨ, ਉਹ ਮਾਂਗ ਸਵਾਰੇ ਵਿਖੇ ਕੋ ਏ ਸਿਮਰੇ ਹਰੀ ਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੜਕੀਲੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਚੇਤਾ ਚਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂ। ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਹੈ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੈ ਐਸਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਰਾਗਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਆਉਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ ਕੋਮਲਤਾ ਆਉਣੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਕਰਕੇ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਣਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਨਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਮ ਫਕੀਰੀ ਸਮਾਜ, ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫੋਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ,
इस दे पिछे एक बहुत गहरी सोचनी है, एक लंबी विचारधारा है कि मैं ऐसा पहना कि मैं छुप जावा, और मैं ऐसा पहना कि मैं प्रदर्शित ना होवा, मैं ऐसा पहना कि दूसरे दियां वासनावां भी प्रदर्शित ना होन। अगर किसी दे कपड़े दे राही किसी दी वासना प्रगट हो रही है तो उदा पहनना बिल्कुल धर्म दी दुनिया च जुर्म है, पाप है। भावे कानून दी दुनिया जुर्म ना होवे लेकिन धर्म दी दुनिया विच ए पाप है, इते गुनाह है। इदा पहनना ही दूजियां दी वासनावां नूं भड़का रहा है, ते भड़कियां होईयां वासनावां किसी वक्त भी किसी दी इज्जत किसी दी असमत लुट सकदियां ने। मौजूदा दौर दा माहौल ऐसा है कि चारों पारे पासे नगनता और अर्ध नगनता दे राही वासनावां नूं प्रदर्शित करन दा एक महान प्रगटावा जो है चल रहा है चारों पासे, और इसे नूं देख के गुरु नानक दी जो है रसना तो निकल गया सी, इते कल युग दा भाव है। नारद नाचे कल का भाव जति सती कहे राखे भाव। मन नारद होवे ते चारों पासे नगनता दी प्रदर्शनी होवे तो फिर जति ते सती लई थां बनानी बहुत औखी है, अपने पैर टिकाने बड़े औखे ने। पहनण दे संबंध च धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ए महान उपदेश इस प्रकार है, रत्ता पहनण मन रत्ता सुपे दी सतदान। ए जो मन परमात्मा दे नाम विच लीन हो गया है, रत्ता गया है, मनो मैं एही लाल रंग दी पोशाक पहनी है, और लाल रंग दे गूढ़े कपड़े पहनण दा हुण चाव नहीं रहा। सुपे दी सतदान, और एही मैं सफेद रंग दे कपड़े पा ले ने, जो दानी बिरतियां पैदा हो गई ने, परोपकार दा मादा पैदा हो गया है। नीली स्याही कदा करनी पैरन पैर ध्यान, जो मन विच अपने विकारां दे प्रति रोस पैदा हो गया है, एही मैं काले रंग दे कपड़े पहने ने। सारी दुनिया विच अज भी रोस दा रंग काला मनिया जांदा है, और वाकई जद किसी नूं अपने गुनाह अपने विकारां ते रोस पैदा हुंदा है, अंदर काले रंग दी धारी जो है बनदी है। महाराज कहंदे मैं एही काले रंग दे कपड़े पहने ने, और जद उन्हां विकारां नूं कट्टण दा ख्याल पैदा हो जाए, साहिब कहंदे एही मैं नीले रंग दे कपड़े पहने ने। नीली स्याही कदा करनी पैरन पैर ध्यान, पैरां दी सोहणी जुत्ती मैं केड़ी पाईए तिल्लेदार, जो ध्यान नूं हे प्रभु तेरे मार्ग ते तोरे है। सोहणी जुत्ती पाई होई है, पैर भटके हुए ने, पैर गलत मार्ग ते चले हुए ने, तो कहा जा सकदे ते पैरों नंगा है। जुत्ती उसदे पैर दे च है जिस दी सुरत ध्यान दे मार्ग ते प्रभु दे मार्ग ते है चल रही है। महाराज कहंदे ने पैरन पैर ध्यान, ओ जो ध्यान तेरे विच जुड़े होया है ते मैं जो चल रहा, यही मैं सोहणे तिल्लेदार पैरां विच जुत्ती पहनी हुई है। कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम, कमर कस्सा मैं संतोख दा कीता होया है। ते हुण सब तो वड्डी प्रदर्शनी दी जिहड़ी वस्तु है ओ है धन, ओ है जोबन। महाराज कहिंदे ने मेरे कोल तेरे नाम तो बिना होर कुछ नहीं, तेरा नाम ही मेरा जोबन है और तेरा नाम ही मेरा धन है। वाकई नाम दे मिलदे हां जो एक स्वप्न उजागर हुंदा है, और नाम दे मिलदे हां जो अंदरों एक बादशाहत पैदा हुंदी है, उसे दिन ही पता चलदा है धन किसनू कहंदे ने, जोबन किसनू कहंदे ने। सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने सारा जोगन ते सारी धन संपदा फिक्की पै जांदी है जिस दिन ए असली धन मनुख नूं जो है प्राप्त हुंदा है। धन जोबन तेरा नाम बाबा होर पहनण खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। हे सियाणे मनुख, ओ पहनणा जो खुआरियां नूं जन्म देवे, मन विच विकारां नूं जन्म देवे, ऐसे पहनणे नूं इक पासे कर। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ए मूल संदेश उपदेश खाण पीण पहनण दे बारे जिस विच बहुत वड्डी सच्चाई है, जो इस तल ते संजमी नहीं, ओ परमात्मा दे मार्ग दा पांदी भी नहीं है।

ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੁਖਸਾਤ ਸਿੰਘ ਜੀਓ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤੜਪ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ, ਸਮਾਧੀ, ਪਰਮ ਰਸ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਤਮਾਮ ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਸੁੱਖ ਸੀਮਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਜੋ ਸੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਨੰਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛਾਇਆ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਸ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਨਿਰਵੈ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰਭੈ ਬਣਨ ਦੀ, ਦਿਆਲੂ ਬਣਨ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਤਾ ਹੈ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਨ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਛਾਇਆ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕੱਲ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਹੈ। ਛਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਚੜਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਔਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ। ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਤਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਘਾਟੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
कबीर निवाण दा रस्ता नहीं चुनदे, इत चढ़ाइया दा मार्ग। एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर, एक बिखड़ी घाटी ते मैं चढ़ लेना। कबीर कहिंदे मेरे अगे कोई नहीं कि मेरी ढारस बजे कि मैं इथों अगे भी कोई जा रहा है, पर मेरे पिछे भी कोई नहीं। पता है उस रस्ते नूं उजड़िया होया रस्ता कहिंदे ने जिस ते कोई चले ना। कहिंदे रस्ता उजड़ गया, क्यों? कोई चलदा ही नहीं। पता नहीं दो शब्द बर्दाश्त करोगे कि नहीं। सारे रस्तियां दे उत्ते वसेबे बड़े ने, बड़िया रौनकां ने, एक धर्म दा मार्ग ही मैनूं उजड़िया होया दिखाई देंदा। इस वास्ते बेशतर चर्च सुन्ने हो गए ने, उजड़ गए ने, बेशतर मस्जिदां बिल्कुल सुनिया हो गई, सन्नाटा छाया है, और बेशतर गुरुद्वारे खाली। कोई अमृत वेले उमंग ते तरंग लेके आए होवन, इस तरह दुनिया दे सारे गुरुद्वारे च इस तरीके दे नाल गल नहीं है। इसनों एक महान शायर इंज कहिंदा है, काफले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। कहिंदा है रब दे मार्ग ते जड़े चले सन कुछ ते पहुंच गए, कुछ रस्ते च ही खप गए। एक कहिंदा हुण ते रस्ता उजड़िया होया दिखाई देंदा, उजड़िया होया। चलिया सी किसे वक्त रविदास, जुतियां गंढण वाले ते जुतियां बनाण वाले मोची थानू सारी दुनिया च मिलणगे। मजा ले इन्हां च कोई रविदास बैठा होवे नहीं है। कपड़े बुणन वाले ते कपड़ियां नू छिंबण वाले, कपड़ियां नू रंग देण वाले छिंबे थानू सारी दुनिया च मिलणगे। पर इस तरह दा नाम देव जो कपड़ियां नू रंग चाड़दियां चाड़दियां अपने मन नू भी रंग चाड़ देवे, ते जिहड़ा कपड़े रंगाण लई आवे ओनू भी रंग देवे। रंगन रंगो सीवन सीवो, राम नाम बिन घरी न जीवो। श्री नाम देव कहिंदे निरा कपड़े मैं नहीं रंगदा, मन भी रंगदा। और जिहड़े कपड़े रंगाण लई आंदे ने निरे, उन्हां दे कपड़े नहीं रंगदा, उन्हां दे मन भी रंग देंदा। रविदास निरियां जुतियां नहीं गंढदा, इधर जुती गंढी जा रहा है, इतना मन अपना मन प्रभु नाल गंढी जा रहा है। तो जिहड़ा जुती गंढाण लई आया है, कोशिश कर रहा है, इहदा मन भी गंढा। यह दो तरह का मोची है, ऐसा चमार अगले की जुती भी गंढ रहा है, अगले का मन भी गंढ रहा है। जुती गंढदिया गंढदिया रब की गल सुनाई जांदा है, जुतियां गंढदियां गंढदियां परमात्मा की लगन पैदा हो सके ऐसी गल करी जांदा है। कपड़िया नू रंगदियां रंगदियां दूजियां दे दिल दिमाग नू रंगण की कोशिश कर रहा है नाम देव। सिर्फ ताणा पेटा एक करके है कबीर कपड़े नहीं बुणदा, बल्कि सुरत ते शब्द नू भी एक करदा है, जीव ते ब्रह्म नू भी एक करदा है। वो ऐसा जुलाहा है, नमाजी ते बड़े ने, पर फरीद जैसा नमाजी लभना बहुत औखा है, बहुत कठिन है। काफले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। इकबाल कहिंदा है, चले सन खुदा दे रस्ते ते जो कुछ ते पहुंच गए, कुछ रस्ते ची दम तोड़ गए, रस्ते सुने पे ने उजड़े हुए ने। इस सदी दे अगर कोई मार्ग उजड़े है तो सिर्फ धर्म दा। बड़ी रौनक है थिएटरां दे, क्लबां दे, अयाशी दे अड्डियां दे, जुए खानियां दे, मैखानियां दे, बड़ी रौनक। रास्ते सुनसान नजर आते हैं, कारण यह रस्ता पहाड़ी रस्ता है, चढ़ाई का रस्ता है, ते हर बंदा चढ़ाइया ते नहीं चढ़ सकता। चाहे शरीर करके चढ़ना होवे,
ਤਾਂ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਛਾਇਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧਨਵਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕਰੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿੰਦਰਾ ਆਲਸ ਭੋਗ ਭੈ ਇਹ ਪਸ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ, ਨਰਨ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਅਧਿਕਤਾ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨ। ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਬੁਕਤ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਸ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਸੁਹੱਪਣ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਰੂਪਤਾ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਫਾ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਵੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸੀ ਜਵਾਨੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਜਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਖੈਰ ਮੁਕਤਸਰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਪ, ਤੇ ਜਪ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਟਨ ਕਰੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਉਤਨੀ ਇਸਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗਤੀ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਤਨੇ ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸਲਾਮੀ ਮੰਤਰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੋ ਅੱਲਾ ਹੋ, ਇਸੇ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੂਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਐਸਾ ਹੀ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਹੋ ਅੱਲਾ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਤੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਕਿਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਰਾਈ ਜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਤਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਤਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋਸ਼, ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ
कुछ होर कहना सी कह लगा गए नहीं जी थोड़ी कथा च भी मैं पुनरुक्ति दिखाई दें दी है रिपीटेशन और कह लगा एक शब्द दे गुरु ग्रंथ साहब दे एक शब्द दे जेड़ी गल है दूजे तीजे च भी हुई है चौथे पंजवें च भी हुई है और मैनु कहन लगा मुदतां तो थानू सुन रहे हैं तुसी भी घूम फिर के उत्थे ही आ जांदे हो पुनरुक्ति रिपीटेशन इते दोष है। मैं कह दोष तू मंदा होवेगा साहित्यकार मंदे होणगे प्रकृति नहीं मंदी परमात्मा नहीं मंदा मैं नहीं मंदा। मैं कह पुनरुक्ति ते ही जीवन है। कहने लगे किस तरह जीवन है जिंदगी किस तरह पुनरुक्त हो गई। मैं कह देखो एक श्वास हुण तू अंदर लै गया है ते हुण एक बाहर आया है हुण मुड़ के अंदर ना ले जाई नहीं ते रिपीट हो जाएगा इत पुनरुक्ति हो जाएगी इत दोष है। बार बार श्वास क्यों लेना एक कोई दफा लै नबज बार बार चल रही है दिल बार बार धड़कता है श्वास ग्रास बार बार चल रहे ने पृथ्वी दे उत्ते दिन बार बार आउंदा है रात बार बार आउंदी है पानी बार बार पीने हैं रोटी बार बार खाने एक कोई दफा जिंदगी च खानी चाहिए है। बार बार क्यों खाना है सवेरे खा ली दोपहरे खा ली शामी फिर खा रहे हैं क्यों पुनरुक्त क्यों कर रहे हैं ये रिपीट क्यों कर रहे हैं बार बार पानी पी रहे हैं बार बार भोजन छक रहे हैं बार बार श्वास ले रहे हैं बार बार दिल धड़क रहे हैं बार बार नबज चल रही है पृथ्वी ते बार बार दिन आ रहे है बार बार रात आ रही है। कहन लगा है इतनी पुनरुक्ति है। कहन लगे मैं इस ढंग नाल सोचिया नहीं सी। बार बार हर के गुण गाओ पातशाह दी बाणी कहंदी है बार बार रटी जाओ वाहेगुरु वाहेगुरु उतने चिर तक करी जा जितने चिर तक तो वाहेगुरु दा रूप नहीं हो जांदा दोनों रटन करी जा। भारत देश ते भारत तो बार इस्लामी दुनिया जितने गुरमंत्र ने करीबन करीबन उस श्वास विरास देश पूरे हो जाते हैं राम पूरा हो जाता है ओम पूरा हो जाता है वाहेगुरु पूरा हो जाता है अल्लाह हो इसे ची पूरा हो जाता है। ये अपने अपने जप करन वाले दे मंत्र ने जगतगुरु बाबा कहिंदे भी ने कोई बोले राम राम कोई खुदा कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह अल्लाह कहता है मंत्र ने। भुख ते सारिया दे अंदर इको है भोजन सारिया दा एक नहीं है। एक कौम दा भोजन भी एक नहीं सारी दुनिया दा भोजन ते एक है ही नहीं। खुराक अलग अलग है। जे सिर्फ भारत नूं ही लो तां बंगालियां दा खाना कुछ होर है ते करनाटकियां दा कुछ होर है महाराष्ट्रियन कुछ होर ढंग नाल खांदे ने आंध्र प्रदेश की खुराक कुछ होर है तमिल केरला की खुराक अलग है पहरावे भी अलग ने गुजरातियां दा खाना कुछ होर है राजस्थानियां दा कुछ होर है पंजाबियां की खुराक कुछ होर है लेकिन भुख कुछ होर नहीं भुख सारियां दी इको है भोजन एक नहीं है भुख इको है और खान दा मकसद भी इको ही है कि भुख मिटे रस आवे भुख मिटे लेकिन भोजन एक नहीं है अंदर ते तड़प सारियां दे इको है प्रभु मिले परमात्मा मिले परम आनंद मिले सुकून मिले शांति मिले चैन मिले आनंद मिले। जिस तरह भोजन एक नहीं है भजन भी एक नहीं है अलग अलग है। भोजन कोई वख वख खाए असी नहीं लड़ते कि तू साडे ढंग नाल क्यों नहीं खा रहे अपने ढंग नाल क्यों खांदा पिया झगड़ा नहीं है। भोजन दी दुनिया दे आपस दे झगड़ा नहीं है भजन दी दुनिया झगड़ा है तू राम राम क्यों आखदा पिया अल्लाह क्यों नहीं कहता तू अल्लाह क्यों कह रहे हैं वाहेगुरु क्यों नहीं कहता ये झगड़े हैं और बड़े व्यापक झगड़े ने बड़े भारी खून खराबे ने। भुख सारिया च इको है भोजन एक नहीं है परम आनंद की तड़प सारिया च इको है
भजन एक नहीं है, अलग अलग है, पर ये अलग अलग भजन दा होना उना लोगों नु परवान नहीं जिन्हों कदी भजन भजन दा रस आया ही नहीं। जिन्हों रस आ गया उन्हों की गल कुछ होर हो जाती है, वो तो कह देंदे ने कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, वो तो इंज कह देंदा है। और हाफिज कहिंदा है, हाफिजा गर वसल ख्वाही सुला कुन बा खास व आम, कहिंदा रब दा विसाल चाहना है, रब दा मिलाप चाहना है, हर एक नाल सुला कर ले, हर एक नाल। और हाफिज ते कहिंदे सन ओही रब दे नेड़े है जो संसार दे नेड़े है, ओही खुदा दे नेड़े है जो मखलूक दे नेड़े है, जो मखलूक तो दूर है खुदा तो भी दूर है, जो बंदियां तो दूर है हो नहीं सकता वह रब दे नेड़े होवे। जिहड़े विचार बंदे नू बंदे नाल ना मिलन देन, यकीन जानना वह विचार बंदे नू रब नाल भी नहीं जुड़न देणगे, पक्की गल। जिहड़े विचार मनुख ते मनुख दे विचकार दीवार खड़ी कर देन, वह विचार मनुख ते खुदा दे विचकार भी दीवार समझ लेने चाहिए ने, मनुख ते परमात्मा दे विचकार भी दीवार समझ लेने चाहिए ने। मनुख ते मैं समझदा सदियां तो अनंत काल तो दीवारा ही खड़ी जा करी जा रहा, नवियां तो नवियां, पुरानियां टुटदियां नहीं पईयां, नवियां होर खड़ियां हो रही, पुराने मसले हल नहीं आते नवे होर, बंदा बंदे तो दूर होंदा गया, बहुत दूर। भावे सैंस बड़ी नेड़े ले आई है, अज कोई दूरी जमीन की दूरी ते नहीं रही, पर बंदा बंदे तो बहुत दूर हो गया, मनुख मनुख तो बहुत दूर है। पाकिस्तान ते पड़ोस देच है, हिंदुस्तान तो बहुत दूर है, बड़ा दूर है, जमीन दे तल ते नहीं, हिरदे दे तल ते बड़िया दीवारा खड़िया ने, बड़िया दीवारा खड़िया ने, मिलना ही औखा है। ते पाकिस्तान दी ते गल छड़ो, हिंदुस्तान दे च रहण वाले हिंदू ते मुसलमान बहुत दूर ने, बहुत दूर ने, बड़ी भयंकर दूरी है। राम ते खुदा दी बहुत वड्डी दूरी है, भावे दूरी नहीं है पर मनुख ने कर दिती है। राम खुदा दे नेड़े नहीं है, खुदा राम दे नेड़े नहीं है। इस वास्ते सारे हिंदू समाज का जोर सी मस्जिद गिरा देईए, इत्थे खुदा दी गूंज आउंदी है। और सारे मुसलमानों की कोशिश सी मस्जिद नूं बचाईए, या किसे वक्त बाबर ने मंदिर गिराया, बाबर कोल ताकत आई, उसने मंदिर गिरा के मस्जिद खड़ी की थी, अजोके सताधारियों कोल सता आई, इन्होंने मस्जिद गिरा के मंदिर खड़ा कर दिता। एक ने मंदिर गिराया, एक ने मस्जिद गिराई, मेरे सामने है। जब मंदिर गिरया सी हजारा हिंदू जारो जार रोए सन, जब मस्जिद गिरी सी तड़पे सन मुसलमान इस तरह जिमें जल तो बिना मछली तड़पती है, तो बड़ी अफरा तफरी मची सी। साबका उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल हरियाणा तो, इसने पार्लियामेंट दे आवाज उठाई, मसला हल हो सकता है, इनू गुरुद्वारा बना दो, राम की धुन भी गूंजती रहेगी, अल्लाह भी गूंजदा रहेगा। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करते हो कि उन्हें पार्लियामेंट दे बोल बोले सन, अखबारां छपे सन, इसनू गुरुद्वारा बना दो, मस्जिद ढाण की लोड़ नहीं पेगी, मंदिर नाल नफरत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह की धुन भी गूंजती रहेगी, राम की ध्वनि भी गूंजती रहेगी। पर हर एक को इतनी